आज की तेज रफ्तार दुनिया में हम तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन प्रकृति हमें धैर्य सिखाती है। हर अच्छी चीज को समय लगता है। अगर आपकी मेहनत का फल अभी नहीं मिला है तो निराश मत होइए, शायद आपकी जड़ें मजबूत हो रही हैं। धैर्य वो शक्ति है जो सपनों को हकीकत में बदल देती है।

सुबह की ठंडी हवा जब चेहरे को छूती है तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति कह रही हो सब ठीक हो जाएगा। जीवन में कई बार हम परेशानियों से घिर जाते हैं, लेकिन याद रखिए कोई भी परेशानी या मौसम हमेशा साथ नहीं रहता। जिस तरह रात के बाद सुबह आती है, उसी तरह कठिन समय के बाद अच्छे दिन भी आते हैं। उम्मीद वो दीपक है जो सबसे घने अंधेरे में भी रास्ता दिखा देता है।

दोस्तों, धीरे धीरे सूरज आसमान में ऊपर उठ रहा है। पंछियों की चहचहाहट अब और मधुर लग रही है। प्रकृति पूरे सौंदर्य के साथ अब नए दिन का स्वागत कर रही है। हर सुबह अपने साथ नई उम्मीद, नया विश्वास और नई संभावनाएं लेकर आती है। इसी सुविचार के साथ मैं अर्चना गोयल आपसे अनुमति चाहती हूँ। नमस्कार।

0: समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक जनसभा करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे। श्री मोदी दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना रहा।
1: The discussions also...
2: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता के लिए भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और ब्रिटेन की विदेश सचिव येविट कूपर ने कल नई दिल्ली में भारत यूके विजन 2035 की समीक्षा के लिए पहली वार्षिक बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत यूके विजन 2035 के विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु तथा स्वच्छ ऊर्जा और शिक्षा के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अवसरों का स्वागत किया है और इसके शीघ्र लागू होने की आशा व्यक्त की है। दोनों पक्षों ने पारस्परिक महत्व

0: के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों और राष्ट्रमंडल सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के विषयों पर भी चर्चा की। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में एक वर्ष का सेवा विस्तार देने को मंजूरी दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में उनका ये कार्यकाल 10 जून से प्रभावी होगा और ये एक और वर्ष की अवधि के लिए रहेगा। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 7 जून तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, आपसी संपर्क और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और इसके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून को 1973 से हुई थी। ये दिन पर्यावरण की रक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में कल भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाइजिंग को शिकस्त दी थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Ajay Kumar. Prime Minister Narendra Modi will visit Gujarat and Daman today. He will dedicate and lay the foundation stone of multiple development projects worth over 18,800 crore rupees in Surat across the road, power and industrial sectors. Mr. Modi will also inaugurate a 200-bedded ESIC hospital in Surat, providing modern secondary healthcare across key specialities. The Prime Minister will also inaugurate several important initiatives of the Government of Gujarat, including modern power distribution rates, advanced effluent disposal and treatment infrastructure at Dahej Petroleum. In the evening, Prime Minister Modi will travel to Daman and lay the foundation stone of development projects worth around 2,970 crore rupees. These projects span various sectors including healthcare, civil aviation, tourism, infrastructure, connectivity and public welfare. Prime Minister Narendra Modi has called upon athletes participating in World Yogasan Championship to become global ambassadors of the Ayush Ministry's Yoga 365 campaign when they return to their home countries. Speaking at the opening ceremony of the championship in Ahmedabad, Mr. Modi said, Ministry of Ayush has launched a Yoga 365 campaign to encourage year-round engagement with yoga and promote healthy lifestyle across communities. The Prime Minister urged athletes from across the world to help spread awareness about yoga beyond the championship.
2: जैसे जैसे योगासना स्पोर्ट्स का विस्तार होगा वैसे वैसे इससे जुड़ी नई संभावनाएं भी बढ़ेगी। ये खिलाड़ियों के लिए नई कैरियर अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। यह ट्रेनर्स, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और इवेंट मैनेजर्स के लिए भी नए अवसर बनाएगा।
1: Prime Minister Narendra Modi yesterday held talks with acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi. The two leaders reviewed the full spectrum of bilateral relations and explored new avenues of cooperation in energy, trade, investment, healthcare, and automobiles, among others. In a social media post, Mr. Modi said they had extensive discussions on expanding cooperation in energy, critical minerals, technology, agriculture, health, and people-to-people ties.

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: FM Rainbow 101.9।

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रोग्राम नमस्ते हेलो आदाब में, जहां आज मैं आपकी धड़कनों पर जीती आरजे प्रीति लेकर आ गई हूं पी का पी यानी के प्रीति का पिटारा। और चलिए, इस प्रीति के पिटारे में बहुत कुछ है मेरे पास आपके साथ साझा करने के लिए करूंगी, पर उससे पहले ना कुछ विशेष जानकारियां आप तक पहुंचानी है, वो भी पहुंचा देती हूं। उससे पहले बात ज्ञानचंद जी की। एक बार ना ज्ञानचंद जी ने ना श्रीमती ज्ञानचंद जी से कहा कि श्रीमती जी पानी पिला दीजिए। तो इस पर श्रीमती ज्ञानचंद जी ने कहा कि क्या ज्ञानचंद जी, प्यास लगी है क्या? तो इस पर ज्ञानचंद जी ने कहा कि नहीं जी, बस चेक करना है कि गला कहीं से लीक तो नहीं कर रहा है। चलिए साथियों, आप जो है ऐसे प्रश्न अपने घर में अपनी श्रीमती जी से जरा सोच समझ कर पूछिएगा, ज्ञानचंद जी की सलाह पर नहीं, वो आपके अपने रिस्क पर, ठीक है ना। तो चलिए, और बहुत सारी बातें हम साझा करेंगे, पर फिलहाल जैसे मैंने आपको बताया कि एक विशेष जानकारी आप सभी के लिए हमको पहुंचानी है, आप सभी को हम तक नहीं पहुंचानी है। जी हाँ, मैं ये देखना चाह रही थी कि आप कितने अलर्ट हैं। बिल्कुल सही।

0: हमें आप सभी तक पहुंचानी है। तो चलिए क्या है वो जानकारी देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। आप ही में से आप ही की फरमाइशें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। स्टे ट्यून्ड।
1: FM Rainbow 101.9
2: తెలంగాణ ఆవిర్భావం తర్వాత రాష్ట్రం మొదటిసారిగా జనాభా లెక్కింపునకు సిద్ధమవుతోంది. మొదటి దశ జనగణన April 26 నుంచి June 9 వరకు, May 11 నుంచి June 9 వరకు జరిగే హౌస్ లిస్టింగ్ ఆపరేషన్ ఇంటింటి సర్వేలో ఎనుమరేటర్ అడిగే ప్రతి ప్రశ్నకు మీ కుటుంబ వివరాలు, మీ ఇండ్ల సమాచారం ఇవ్వటం పౌరులుగా మన బాధ్యత. అలాగే స్వీయ గణన ఐడిని కూడా ఎనుమరేటర్ కు అందజేయండి. డైరెక్టర్ ఆఫ్ సెన్సస్ ఆపరేషన్స్ తెలంగాణ శ్రీమతి భారతి హోళీకేరి గారు ఏమంటున్నారంటే,
3: మీ వివరాలు గోప్యంగా ఉంచబడతాయి. మన జనగణన మన వికాసం, మన జనగణన మన అభివృద్ధి.
1: FM Rainbow 101.9
0: और साथ ही आकाशवाणी के उसी एफएम रेनबो 101.9 पर आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम नमस्ते हेलो आदाब। और आप यदि इस प्रोग्राम में अपने पसंदीदा गीत सुनना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है +91040232348222। तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ज्ञानचंद जी ने श्रीमती ज्ञानचंद जी से जो पानी के लिए पूछा, तो भाई पानी पानी की तो बात ही क्या कहूँ। इस तपती गर्मी में कुछ और मिले या ना मिले, यदि ठंडा पानी मिल जाए ना तो वह एहसास किसी स्वर्ग के एहसास यानी कि जन्नत से कम नहीं है, है ना। साथियों पानी जो है ना वो मात्र प्यास बुझाने का साधन नहीं बल्कि एक प्राकृतिक औषधि भी है। जी हाँ, पानी को आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों में ही जीवन का आधार माना गया है। मानव शरीर का लगभग 70% हिस्सा पानी है, पानी से बना है, और यही कारण है कि इसे प्राकृतिक औषधि भी कहा गया है। अब इस प्राकृतिक औषधि से हम और क्या लाभ ले सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि हमें फिलहाल बहुत लंबा चलना है। जी हाँ, हम चलें एक लॉन्ग ड्राइव पर, तो चलिए एक लंबे लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं।

0: रेनबो 101.9।
1: और साथियों आकाशवाणी के उसी एफएम रेनबो 101.9 पर आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम नमस्ते हेलो आदाब। आपके धड़कनों बजते आरजे प्रीति के साथ और जहां पर हम बात कर रहे हैं पानी के बारे में। जी हां साथियों, तो जैसे मैंने आपको बताया कि पानी ना केवल प्यास बुझाने का साधन नहीं बल्कि यह रक्त प्रवाह यानी कि ब्लड सर्कुलेशन, पाचन अर्थात कि डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म, शरीर की सफाई और कोशिकाओं को ऊर्जा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह मेरा नहीं बल्कि हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है। सुनकर आप भी चौंक गए ना। मुझे भी हेल्थ एक्सपर्ट से डिटेल जानने से पहले ना ऐसा ही आश्चर्य हुआ था, परंतु इस संदर्भ में जो मैंने उनसे सुना उसके बाद में मुझे यकीन हो गया और वही मैं आपसे साझा करना चाहती हूँ। साथियों हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्वस्थ व्यक्ति को रोजाना लगभग 2.5 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए, जो कि कई रूपों में सहायता करता है। जी हाँ, जैसे कि रक्त संचार में, जी हाँ ब्लड सर्कुलेशन में भी आपको ये पानी सहायक है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रक्त का ना 90% हिस्सा यानी कि 90% जो है पानी ही है, और वो वही जो है ऑक्सीजन और पोषण को अंगों तक पहुंचाता है और शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। इसका अर्थ है कि गुर्दे यानी कि किडनी जो है वो पानी की मदद से शरीर की गंदगी और यूरिक एसिड जैसे टॉक्सिक्स बाहर निकालते हैं, है ना। और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपके साथ साझा करूंगी। और यदि आप अपने पसंदीदा गीत सुनना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथियों हमारा व्हाट्सएप नंबर है +91040232348222। और ये है, जब हम बात पानी की कर रहे हैं तो चलिए एक ऐसा ही गीत हो जाए, क्यों नहीं।

0: FM Rainbow 101.9 Musically Yours.
1: और दोस्तों आकाशवाणी की उसी FM Rainbow 101.9 पर आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम नमस्ते हेलो आदाब. और मेरे साथ आज स्टूडियो में मैं अकेली नहीं हूँ, कोई और भी हैं. जाना चाहेंगे? नहीं नहीं तो ठीक है, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं. आप तो है ही मेरे साथ, पर साथ ही आप स्टूडियो में नहीं है. हाँ, मैं स्टूडियो की बात कर रही हूँ, तो मेरे साथ स्टूडियो में है ऐश्वर्या जी, आरजे ऐश्वर्या. वेलकम आरजे ऐश्वर्या जी.
2: हेलो हेलो प्रीति.
1: सो हाउ आर यू?
2: आई एम सो गुड, हाउ आर यू?

0: FM Rainbow 101.9 Musically Yours।
1: और साथ ही आकाशवाणी के उसी FM Rainbow 101.9 पर आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम नमस्ते हेलो आदाब। आपके दर्पण वंचित आरजे प्रीति के साथ और मैं जो पी कपी यानी कि प्रीति का पिटारा लेकर आए उसमें हम बात कर रहे हैं पानी के बारे में। तो साथियों, हम पानी पीने के सही समय के बारे में आपके साथ जानकारी साझा करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि वैसे तो हम प्यास लगने पर पानी पीते ही हैं, पर सही समय जो हेल्थ एक्सपर्ट्स बताते हैं वो मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। हेल्थ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि सुबह खाली पेट संभव हो तो पानी अवश्य पिए। साथियों, रात भर का जमा हुआ विषैला तत्व बाहर निकालने के लिए सवेरे खाली पेट 1 से 2 ग्लास गुनगुना पानी पीने से लाभ होता है। और दूसरा है भोजन से आधे घंटे पहले। यदि आप भोजन से आधे घंटे पहले पानी पीते हैं तो पाचन शक्ति को बढ़ाने में सहायता होती है। और तीसरा है भोजन के 1 घंटे बाद। जी हाँ साथियों, 1 घंटे के बाद एक्सपर्ट्स ये बताते हैं, हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाचन प्रक्रिया सुचारू रूप से होने के लिए भी पानी सहायता करता है और भोजन के 1 घंटे बाद पिया हुआ पानी पाचन पूर्ण होने में सहायता करता है। इसके बाद चौथा है व्यायाम के बाद। व्यायाम के बाद डिहाइड्रेशन से बचने के लिए पानी अवश्य पीना चाहिए। और पांचवा है सोने से पहले। बताया जाता है कि दिल और मस्तिष्क को संतुलित रखने के लिए सोने से पहले थोड़ा पानी पीना चाहिए। ध्यान रहे, मैं थोड़े की बात कर रही हूँ। जी हाँ, सुना ना आपने? अरे नहीं सुना तो सुन साथिया।

0: साथियों, आप गीत सुनना चाहते हैं ये तो मैं जानती हूँ, पर उससे पहले एक विशेष जानकारी मुझे आप तक पहुँचानी है, ये आप नहीं जानते हैं, तो वही जान लीजिए क्या है।
1: FM Rainbow 101.9

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे

0: देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: FM Rainbow 101.9

साथियों नमस्ते, हेलो, आदाब में आप सुन रहे हैं आपकी दर्पण मस्जिद आरजे प्रीति के साथ पी का पी यानी कि प्रीति का पिटारा। और प्रीति के पिटारे में आज हम पानी, जो कि पर्यावरण, हमारे शरीर, हमारा सब मुख्य हिस्सा है, वो हम उसके बारे में जानकारी साझा कर रहे हैं। पानी से ना एक बात याद आई, एक बार श्री ज्ञानचंद जी ने श्रीमती ज्ञानचंद जी से पानी पूछा। अरे वो मैं जो पहले बताया वो नहीं जी, दूसरी बात कर रही हूँ। तो जब जैसे उन्होंने पानी पूछा, उन्होंने कहा कि श्रीमती जी पानी पिला दीजिए। तो इस पर श्रीमती ज्ञानचंद जी ने कहा कि बिरयानी खाएंगे। तो ज्ञानचंद जी ने कहा, अरे भाई भाग्यवान, मैं तुमसे पानी मांग रहा हूँ और तुम बिरयानी की बात कर रहे हो। फिर श्रीमती जी ने कहा कि बिरयानी खाएंगे। फिर ज्ञानचंद जी ने वही बात कही, पुनः श्रीमती जी ने ऐसे ही कहा। तो इस पर जो है, आखिर जब तीसरी बार उन्होंने सुना ना, तो उनके मुँह में पानी आ गया।

तब श्रीमती ज्ञानचंद जी ने कहा कि बिरयानी खाएंगे। तो इस पर ज्ञानचंद जी ने कहा कि हाँ भाग्यवान, सुनकर मुंह में पानी आ गया। तो इस पर श्रीमती ज्ञानचंद जी ने कहा, बस वही पी लीजिए और अपनी प्यास को बुझा लीजिए। तो भाई साथियों, जब आप घर में पानी मांगे और इतनी 4 बार आपको पूछना पड़े, उससे ज्यादा अच्छा मुझे ये लगता है कि आप स्वयं उठकर अपना पानी ले लीजिए, ठीक है ना। और वैसे ही थोड़ा हो सके तो श्रीमती जी के गर्म दिमाग को ठंडा करने के लिए उन्हें भी पानी पिला दीजिए। तो चलिए साथियों, बात जो है हम पानी के समय की कर रहे हैं कि पानी कब समय उचित समय कौन सा है पानी पीने के लिए। तो जो मैंने आपको समय बताया, ये तो विज्ञान की बात हुई। अब हम पानी के आयुर्वेदिक महत्व को जानने की कोशिश करते हैं। आयुर्वेद में जीवन पानी को जो है वो जीवन रसायन कहा गया है। इसमें 3 तरह के सेवन बताए गए हैं। पहला है उष्णोदक। अब आप ये सोच रहे होंगे कि उष्णोदक क्या है। उष्णोदक यानी कि गर्म पानी। यह माना जाता है कि गर्म पानी जठराग्नि को बढ़ाता है और वजन घटाने में सहायता करता है। दूसरा है शीतोदक यानी कि ठंडा पानी। यह पानी पित्त और शरीर की गर्मी को संतुलित करता है। और तीसरा है औषधोदक यानी कि हर्बल वाटर। तुलसी, सौंफ, जीरा, धनिया डालकर उबाल कर पिया हुआ पानी जो है, उबाला गया पानी जो है वो हर्बल वाटर यानी कि औषधोदक होता है। और औषधोदक जल जो है वो बीमारियों से बचाव करता है। आयुर्वेद में पानी को अग्निशमन माना गया है। इसका अर्थ है कि यह शरीर में उत्पन्न अतिरिक्त गर्मी को शांत करता है। तांबे के बर्तन में रात भर रखा पानी सुबह पीने से शरीर में त्रिदोष संतुलित होता है यानी कि वात, पित्त और कफ के दोषों का संतुलन होता है। यह पानी प्राकृतिक रूप से जो है वो एक एंटी बैक्टीरियल और लिवर टॉनिक माना गया है। भाई ये पानी तो लिवर टॉनिक हो सकता है, बट आपके हार्ट का टॉनिक जो है वो आपके पसंदीदा गीत है। और आपके पसंदीदा गीत हम प्ले करने से नहीं चुकेंगे, मैं आपसे बात कर रही हूँ। जी हाँ, आप ही से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप ही से जो आप ऐसे अपनी मुंडी लटकाए बैठे हैं। आपको इतना गर्दन लटका कर बैठने की, इतना सैड होने की आवश्यकता ही नहीं है। आप अपने पसंदीदा गीत सुनने के लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है +91040232342। तो चलिए, वैसे हमें मौसम में भी पानी की बहुत ही दरकार है, तो चलिए ब्लू है पानी पानी सुन लेते हैं।

0: మీరింతవరకు ఈరోజు ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం సందర్భంగా పచ్చని చెట్లు ప్రగతికి మెట్లు, పర్యావరణాన్ని పరిరక్షిద్దాం, జీవ వైవిధ్యాన్ని కాపాడదాం ఈ అంశం గురించి ప్రత్యక్ష ఫోన్ఇన్ కార్యక్రమం విన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నవారు శ్రీ వినయ్ కుమార్, ఐఎఫ్ఎస్ ప్రిన్సిపల్ చీఫ్ కన్జర్వేటర్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్, హెడ్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ ఫోర్స్, ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్, తెలంగాణ. ఈ కార్యక్రమ అనుసంధానం శ్రీమతి కె నీలిమ గారు. ఈ కార్యక్రమం ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్ర సమర్పణ. ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం, సమయం 12 గంటలు. మరికొద్ది క్షణాల్లో వార్తా ప్రసారం ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి.
1: भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है. द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत रुख तटस्थ रखा गया है.
2: After a detailed assessment,
3: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है. इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है.
1: स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है. बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है. बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे. श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे. दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे. हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री लगभग 2,970 करोड़ रुपए के विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे.
4: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे. वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4 लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुँच में सुधार होगा. जनकल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 24 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ESIC अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे. अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद.
1: प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 जून को नागरिक अलंकरण समारोह में इस वर्ष के 65% व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी. इससे पहले पिछले महीने श्रीमती मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में 66% व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे. इस वर्ष राष्ट्रपति ने 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कारों सहित कुल 131 पद्म पुरस्कारों को स्वीकृति दी है. केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह आज जम्मू में एक नए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना के औपचारिक घोषणा करेंगे. ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में मौसम पूर्वानुमान और आपदा तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है. बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें बेंगलुरु विकास मंत्रालय देने का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें जल संसाधन मंत्रालय दिया गया, इसलिए उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे. आज विश्व पर्यावरण दिवस है. पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं. प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलों ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जारी है. उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में स्थायी रूप से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाना चाहिए. घरेलू

0: वेलकम बैक दोस्तों, पुनः एक बार आपका दिल की गहराइयों से स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम नमस्ते हेलो आदाब में, जहां आज मैं आपके धड़कनों पर जीती आरजे प्रीति, जो पी का पी यानी कि प्रीति का पिटारा लेकर आए हूं, उसमें बहुत सारी बातें आपके साथ साझा करनी है और आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए आगे बढ़ने से पहले ज्ञानचंद जी क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। आज सवेरे ना श्रीमती ज्ञानचंद जी ना बड़े रोमांटिक मूड में थी और श्रीमती ज्ञानचंद उसी समय जो है ज्ञानचंद जी क्या है वो पेपर पढ़ रहे थे, तो श्रीमती ज्ञानचंद जी ने कहा कि काश ज्ञानचंद जी मैं न्यूज़पेपर होती तो कम से कम तुम रोज़ रोज़ मुझे अपने हाथों में तो लेते। इस पर श्री ज्ञानचंद जी ने कहा कि हाँ मैं भी यही सोचता हूँ श्रीमती जी कि काश तुम न्यूज़पेपर होती तो मुझे रोज़ रोज़ नई नई तो मिलती। बस उसके बाद में क्या हुआ मुझे ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है साथियों, क्योंकि जोड़ों का दर्द तो जोड़े ही जानते हैं। खैर बात चाहे कुछ भी हो, पर आप जो है कोई भी हिटो या पिटो, भाई आप तो अपने रेडियो सेट्स के पास सिटो और एंटरटेनमेंट का मजा लूटो।
1: तू भी आ जा के आ गई, रुत

0: FM Rainbow 101.9
1: और दोस्तों आकाशवाणी के उसी एफएम रेनबो 101.9 पर पुनः एक बार आपका दिल की गहराइयों से स्वागत है। जहां मैं आपके धड़कनों पर जीती आरजी प्रीति जो शो लेकर आई हूं उसमें अब समय हो चला है आपके प्रोग्राम का, जी हां, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है, हेलो रेनबो का। तो चलिए हेलो रेनबो में आगे बढ़ने से पहले एक बात ज्ञानचंद जी की। एक बार ना ज्ञानचंद जी ने क्या कहा कि बताओ क्या कहा या नहीं बताऊं, सुनना चाहते हैं? चलिए ठीक है, चलिए मैं ज्ञानचंद जी की बात आपको बताती हूँ। ज्ञानचंद जी ने श्रीमती जी से क्या क्या वो नहीं बताती हूँ। एक बार मैंने ज्ञानचंद जी से, मैंने नहीं पूछा, किसी और ने पूछा था कि ज्ञानचंद जी डू यू हैव बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, तो ज्ञानचंद जी ने कहा कि यस आई हैव। तो उस पर सामने वाले ने पूछा कि वेयर शी इज, सो उन्होंने कहा कि शी इज कमिंग फ्रॉम अनदर नेशन। तो सामने वाला बंदा चौंक गया, उसने कहा अनदर नेशन? तो उसने कहा हाँ, विच नेशन? सो ज्ञानचंद जी क्या कहा पता है? ज्ञानचंद जी ने कहा शी इज कमिंग फ्रॉम इमेजिनेशन। तो भाई अब आप इमेजिनेशन में मत जाइए, आप हकीकत की दुनिया में आ जाइए, जहां पर आज हमें आपसे कुछ पूछना है और आपको कुछ बताना है ना। तो भाई आज विश्व पर्यावरण दिवस है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, तो मैं आप सभी से क्या पूछना चाह रही हूँ कि पर्यावरण को बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या किया जा सकता है, तो आप मुझे कॉल करके बताइएगा। कॉल करने के लिए नंबर्स हैं 2323003023234821 या फिर 2970471 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यदि हमारी फोन लाइन बिजी आ रही हैं तो भाई दोस्तों नाराज नहीं होने का, टेंशन नहीं लेने का, बस हमें एक व्हाट्सएप मैसेज कर देने का। हमारा व्हाट्सएप नंबर है +91040232348 2। जी हाँ, और आगे बढ़ने से पहले एक विशेष जानकारी आपके साथ हमें साझा करनी है, स्टे ट्यून्ड।
0: FM रेनबो 101.9

0: submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy. Combat ready, cohesive, Atmanirbhar. Safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
1: तो साथियों, हमने आपसे पूछा कि पर्यावरण को बचाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, इस पर आप अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। और जब तक आप अपने फोन्स जो हैं हम तक पहुंचाते हैं, तब तक हम एक प्यारा सा गीत आप तक पहुंचा दिए देते हैं। स्टे ट्यून्ड।
2: झोपड़ियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

0: रेनबो 101.9।
1: और साथियों ये हमने आपसे कहा आप हमें कॉल कर सकते हैं और कॉल करने के लिए नंबर्स हैं 2324822। नहीं आप कितना अलर्ट है यही तो मुझे देखना था। 2324822 तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। चलिए एक विशेष जानकारी आप तक पहुंचा दिए देते हैं।
2: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech cadet entry scheme, permanent commission, last date for

और साथियों आकाशवाणी के उसी एफएम रेनबो 101.9 पर अब बारी एक अहम जानकारी की।

0: मुक्त भारत अभियान
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: FM Rainbow 101.9
4: और साथियों आकाशवाणी के उसी एफएम रेनबो 101.9 पर आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम हेलो रेनबो, जहां पर आज हमने आपसे पूछा है कि पर्यावरण को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है। तो हमारे साथ कुछ कॉलर्स जुड़ रहे हैं, देखते हैं उनका क्या कहना है। हेलो रेनबो।
5: नमस्ते यार।
4: नमस्कार नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
5: हैदराबाद इकबाल बात कर रहा हूँ।
4: बस आपकी यही बात सुनने के लिए आपसे आपका नाम पूछना पड़ता है इकबाल जी।
5: यही पर्यावरण है जो आप अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, गुफ्तगू का जब पर्यावरण होता है उसको अच्छा बनाने के लिए आबो हवा हो, जैसा टैगिंग पावर हो, इस तरह से आप कुछ करते हैं अपना काल नहीं लगने पर, कृपा करिए माफ कर दीजिए कहते हैं, तो काल नहीं लगने की जो खुशी होती है, जो आप माफी चाहते हैं नहीं कल रिसीव हो सका बोल के, वो बहुत अच्छी खुशी दिखती है, यानी कि बेहतरीन पर्यावरण बन जाता है उससे।
4: धन्यवाद धन्यवाद। चलिए हम वैसे इस बात के लिए हम अपने आप को ये समझते हैं कि हमारे किसी छोटे से प्रयास के कारण हम किसी के चेहरे पर खुशी लेकर आ रहे हैं।
5: हाँ, ये बेहतरीन पर्यावरण है और जितनी भी अच्छी आबो हवा हो और इंसान में अगर गुफ्तगू का अगर जरा भी लफ्ज गलत हो जाए
4: जी,
5: तो पूरा पर्यावरण खराब हो जाता है। तो गुफ्तगू का पर्यावरण अच्छा रहना ये आपसे सीखना पड़ता है।
4: बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस काबिल समझा।
5: सही कहना था। और एक गाने का मुखड़ा सुनाना चाह रहा हूँ मैं।
4: जी जी जी।
5: हम लाए हैं तूफान से
4: कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। बहुत बहुत खूब, बहुत अच्छे इकबाल जी, धन्यवाद। तो साथ ही थे इकबाल जी जिन्होंने अपनी बात हमारे साथ साझा की। यदि आप भी अपनी बात हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर 2323-4821 या फिर 2323-0030 या फिर साथियों 2970-4715 पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यदि हमारी फोन लाइन आपको बिजी आ रही है तो आप भाई नाराज नहीं होने का, टेंशन नहीं लेने का, बस एक व्हाट्सएप कॉल कर देने का। और हमारा व्हाट्सएप नंबर तो आप जानते ही हैं। तो एक और कॉलर जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं उनका क्या कहना है। हेलो रेनबो।
6: हेलो रेनबो प्रीति जी, गुड आफ्टरनून।
4: हैप्पी आफ्टरनून, हैप्पी आफ्टरनून। रमणय्या गारू వెల్కమ్.
6: బాగున్నావు కదా?
4: మీ దయ వలన బాగున్నాను సార్, చెప్పండి.
6: ప్రీతి ప్రీతి బాగుండాలి. ఐశ్వర్యం అమ్మాయి ఐశ్వర్య వచ్చింది కదా?
4: అవును సార్, ఐశ్వర్య మేడం కూడా వచ్చారు ఇవాళ. ఐశ్వర్యకి కూడా ఆశీర్వదించండి.
6: ఐశ్వర్య కూడా బాగుండాలి, ఆమెతో మాట్లాడితే మనకు మాకు ఐశ్వర్యం వస్తుంది.
4: అవును అయితే సార్,

0: FM Rainbow 101.9।
1: और साथियों आकाशवाणी के उसी एफएम रेनबो 101.9 पर आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम हेलो रेनबो, जहां पर आज हमने आपसे पूछा कि पर्यावरण को बचाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। जी हां साथियों, पौधे तो हम सभी लगाते हैं और आज विशेषतः विश्व पर्यावरण दिवस के दिन तो सभी लगाते ही हैं, पर मुख्य बात यह है कि फिर से उसका संरक्षण भी किया जाए। ऐसा नहीं कि बस आज लगा दिए और छोड़ दिए, फिर अगले पर्यावरण दिवस पर ही हम उसको उसकी तरफ मुड़कर देखेंगे, ऐसे नहीं होता है। तो इस पर आपका जो भी आपकी राय है आप हमें हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमें कॉल करने के लिए नंबर्स हैं 2323-4821 या फिर दोस्तों 2323-0030 या फिर 2970-4715 पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जहां तक हम आगे बढ़ते हैं मैसेजेस की ओर, तो मैसेज भेजा है नमस्ते प्रीति जी, नमस्ते, आपके प्रोग्राम, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती हैं, थैंक यू। और हमारे लिए एक गाना सुनना चाहते हैं, वो मूवी विश्वात्मा से। करमन घाट से मैसेज भेजा है कि श्रीकांत चारी, हारिका सुमना एंड साई मणिकांतिका ने, और तनिष्क कार्तिक ने भी भेजा है। तो ये इस प्यारे से गीत की फरमाइश जो कर रहे हैं, तो चलिए उसी और पहुंचते हैं। साथियों वैसे आप भी यदि कोई गीत सुनना चाहते हैं या फिर कोई मैसेज किसको डेडिकेट करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है +9104023234822। स्टे ट्यून्ड।

0: ಎಫ್ಎಂ ರೇನ್ಬೋ 101.9.
1: ప్రజా పాలన ప్రగతి ప్రణాళిక విజయవంతంగా కొనసాగుతోంది.
2: 5 దశల్లో 99 రోజుల ప్రత్యేక కార్యక్రమం, శాఖల వారీగా 10 థీమ్లతో ప్రత్యేక కార్యాచరణ. ఇప్పటికే పరిసరాల పరిశుభ్రత విజయవంతం కాగా వైద్య రంగంలో అద్భుతమైన అడుగులు వేయబడ్డాయి. అరైవ్ అలైవ్ తో ప్రాణాలకు రక్షణ, సంక్షేమ వారోత్సవం, డ్రగ్స్ నిర్మూలనకు కఠిన చర్యలు, విద్య, వైద్యం, వ్యవసాయం, పర్యావరణం మొదలైన 10 కీలక రంగాలలో సమస్యల పరిష్కారానికి పటిష్టమైన చర్యలు. ప్రగతి పథం, సకల జనహితం, మన ప్రభుత్వం.
3: यस दोस्तों, तो हम बात कर रहे हैं हेलो रेनबो में. हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, देखते हैं उनका क्या कहना है. हेलो रेनबो. लगता है इन्होंने अपना कॉल ड्रॉप कर दिया है. कोई बात नहीं, हमारे साथ मधुलिका जी जुड़ी थी. जी हाँ, और वो अपनी राय साझा करना चाहती थी, बट शायद उनका फोन कट हो गया, ऐसे मुझे लग रहा है. पुनः एक बार कोशिश करते हैं. हेलो रेनबो.
4: हेलो.
3: हेलो, नमस्कार जी, कौन बात कर रहे हैं?
4: आपको और ऑस्ट्रेलिया हर के अवसर है तो स्वागतम करो. और सब व्यक्तियों को नमस्कार. आप आरती है सबको अभिनंदन कर रहा हूँ. मैं सोनू बात कर रहा हूँ शिवरामपल्ली से.
3: शिवरामपल्ली से सोनू जी हमारे साथ जुड़े हैं. पर सोनू जी, हम आपसे यही नम्र निवेदन करते हैं कि कृपया आप अपनी बात संक्षेप में साझा करें और मात्र आज के विषय पर ही बात करेंगे.
4: आपका मर्जी.
3: हाँ जी, हाँ जी, बताइए.
4: तो आप जो बोले सही बात, जो पेड़ का लगाना सोचना ये बराबर है, उसकी सुरक्षा करना ये होता हमारा धर्म.
3: बिल्कुल, वो उसकी सुरक्षा करना हमारा धर्म है, ये बात बिल्कुल आपने सही बताई.
4: हाँ सुनो, उसको रक्षा करने के लिए जो प्रदूषण हो रहे प्लास्टिक यूज करना और ज्यादा मच्छर जान जो निकले. आप जॉब करे आपको भी गाड़ी होना, आप भाई को करे भाई को भी गाड़ी होना, आप घर में कितना सदस्य सबको एक एक गाड़ी.
3: बिल्कुल,
4: जो धुआं बाज रहे वो भी प्रदूषण हो रहे.
3: बिल्कुल,
4: आप भी आ रहे हैं ना मार्केट में कि जींस करूँ बिना पॉलिथीन से. कोई नहीं तो गैस नहीं ले, गैस यूज करना, प्लास्टिक कम करना. ये ग्रामांचल में ज्यादा होता. आप लोग हमेशा प्रयास कर रहे, जितना आगे रेडियो माध्यम में सेंटर में कर रहे, आज नहीं जब से भी ये प्रदूषण सृष्टि हुआ उसको रोकना हमारा ये इंसान का काम है. शहर में सब सुन रहे,
3: बिल्कुल कोई नहीं समझ रहा है. ये बात बिल्कुल आपने सही कही. बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सोनू जी.

0: बहुत धन्यवाद आपका, और यहाँ पर हम साथियों रुकते हैं एक विशेष जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। स्टे ट्यून्ड।
1: తెలంగాణ ఆవిర్భావం తర్వాత రాష్ట్రం మొదటిసారిగా జనాభా లెక్కింపునకు సిద్ధమవుతోంది. మొదటి దశ జనగణన ఏప్రిల్ 26 నుంచి జూన్ 9 వరకు, మే 11 నుంచి జూన్ 9 వరకు జరిగే హౌస్ లిస్టింగ్ ఆపరేషన్ ఇంటింటి సర్వేలో ఎనుమరేటర్ అడిగే ప్రతి ప్రశ్నకు మీ కుటుంబ వివరాలు, మీ ఇండ్ల సమాచారం ఇవ్వటం పౌరులుగా మన బాధ్యత. అలాగే స్వీయ గణన ఐడిని కూడా ఎన్యూమరేటర్ కు అందజేయండి. డైరెక్టర్ ఆఫ్ సెన్సస్ ఆపరేషన్స్ తెలంగాణ శ్రీమతి భారతి హోళీకేరి గారు ఏమంటున్నారంటే,
2: మీ వివరాలు గోప్యంగా ఉంచబడతాయి. మన జనగణన మన వికాస, మన జనగణన మన అభివృద్ధి.
3: ఎఫ్ఎం రెయిన్బో 101.9.
0: और साथियों आकाशवाणी के उसी एफ एम रेनबो 101.9 पर हम आपके साथ बात कर रहे हैं आपके अपने शो हेलो रेनबो में, जहां पर काफी कॉलर हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं. हम उन तक पहुंचेंगे, पर फिलहाल मैसेजेस की ओर भी बढ़ते हैं. एंड सुषमा जी ने मैसेज किया है और कहती हैं कि हाय आरजे प्रीति, सो ऑसम यू ऑन एफएम. बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुषमा जी, और सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दे रही है. बहुत धन्यवाद, और सभी की ओर से आपको भी प्रति अभिवादन इस विश्व पर्यावरण दिवस पर सुषमा जी. और मैसेज किया है रेडियो शौकीन सरवर जी ने, एक गाने की फरमाइश की है. हम पूरी कोशिश करेंगे सरवर जी आपकी फरमाइश पूरी प्ले करने पूरी करने की. और मैसेज आया है अशोक जी दरियानानी ने मैसेज भेजा है, मैं मैसेज आपके साथ पुनः साझा करूँगी. पर फिलहाल फिलहाल फिलहाल हम बढ़ते हैं एक अहम जानकारी की ओर. स्टे ट्यून्ड. और साथियों आकाशवाणी के उसी एफएम रेनबो में, जैसे हमने आपको बताया कि आप सुन रहे हैं हेलो रेनबो, तो यदि आप आज विश्व पर्यावरण दिवस पर अपनी बात हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं. कॉल करने के लिए नंबर्स हैं 2323002023 2323 4822 या फिर 2970471715 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं. स्टे ट्यून्ड.

0: क्या कहना चाहते हैं। हेलो रेनबो,
1: हेलो,
0: नमस्कार जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: हम बोले कि प्रभाकर राव बात करें। मैडम
0: प्रभाकर राव साहब, स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया है, आप कैसी है? हाँ,
0: आप बढ़िया हैं तो हम भी बढ़िया ही हैं सर।
1: तो आज तो ये पर्यावरण के लिए हम कहाँ आई मालूम है आपको? चिकमगलूर के पास एक पहाड़ है मुलायन गिरी बोल के और सीता गिरी बोल के।
0: सीतागिरी, मुलायन गिरी, जी हाँ,
1: हाँ,
0: चिकमंगलोर में, जी
1: मुलायन
0: हाँ।
1: गिरी, बहुत पहाड़, बहुत ऊंचा है, बहुत बड़ा है, पूरा अपना क्लाउड्स के साथ हम भी सुन रहे थे। ये
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छी बात है, आप बादलों के साथ जो है।
1: पर्यावरण के दिन में आके देखने वाले तो पूरा पर्यावरण देख रहे हैं यहाँ पर। हाँ,
0: अच्छा, आप पूरा पर्यावरण वहां पर देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात, बहुत
1: अरे
0: अच्छा लगा
1: बोले
0: कि
1: प्रभा करो, नमस्कार जी।
0: आप वहां पर जो है पर्यावरण, विश्व पर्यावरण दिवस आप वहां पर मना रहे
1: जी
0: हैं, बहुत अच्छा लगा जान के, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और साथियों, एक और कॉलर हमसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं उनका क्या कहना है। हेलो रेनबो, लगता है उन्हें हमारी आवाज पसंद नहीं आई। कोई बात नहीं साथियों, आपको हमारी आवाज पसंद नहीं आई तो क्या हुआ, इस गीत की आवाज आपको अवश्य पसंद आएगी।

0: रेनबो 101.9
1: और साथियों आकाशवाणी के उसी एफएम रेनबो 1.9 पर आप सुन रहे हैं हेलो रेनबो, जहां पर आज हमने आपसे पूछा कि पर्यावरण को बचाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। इस वक्त कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, देखते हैं उनका क्या कहना है। हेलो रेनबो,
2: वेरी वेरी वेरी वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, हैप्पी गुड आफ्टरनून प्रीत जी, श्रीनिवास राव मलकपेट में।
1: वेरी वेरी वेरी, जितने भी श्रीनिवास राव जी ने कहा उससे प्लस वन वेरी हैप्पी आफ्टरनून श्रीनिवास राव जी, वेलकम।
2: ओके ओके माँ, तो आपका टॉपिक बहुत ही अच्छा है,
1: धन्यवाद।
2: तो आजकल जैसे आप बोले तो पर्यावरण बचाने के लिए बहुत सारे चीज है, मगर कंपल्सरी वो करे तो अपन बच सकते हैं। इन फ्यूचर में चलने का है, सोसाइटी में रहने का है, तो कंपल्सरी झाड़ लगाना कंपल्सरी जरूरी है। आज ही हमारे मोहल्ले में तो एक हमारा ये है यूनियन है, तो उन लोग पूरे मिलके आज घर घर फिर के घर के किधर है किधर नहीं है वहाँ झाड़ा लगा दे के आ रहे हैं।
1: बहुत अच्छी बात। यहाँ पर एक छोटी सी बात आपको रोकने के लिए क्षमा चाहूंगी श्रीनिवास राव जी, झाड़ लगा रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, पर उसका संरक्षण कितना करते हैं वो बताइए।
2: नहीं नहीं नहीं, वो आप बोले ऐसा करेक्ट है, लगाना अपना काम है मगर बचाना भी अपना काम है। तो आप बोले वैसा क्या है, वो तो घर वालों को इतला दे दे रहे हैं। आप लोग अगर घर का रोजाना पानी अगर नहीं डाले तो फाइन करेंगे हम लोग।
1: बहुत अच्छे बहुत अच्छे, कम से कम इस बहाने वो थोड़ा सा जो है
2: एसोसिएशन
1: इसमें इनिशिएटिव लेंगे।
2: एसोसिएशन में कंपल्सरी वो लगा आते रहते जाते रहते, फिर उन लोगों को कुछ मुश्किल गया तो हम ही ना काम करने का मैडम।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: पानी का हों दो ये सब का हों दो, हम ही उनको छोटे बड़े कामों में सहायता करते हैं, तो उसीलिए अपनी बात सुनते हैं।
1: चलिए बहुत अच्छी बात, और हम यही चाहेंगे कि बाकी लोग भी जितने भी लोग श्रीनिवास राव जी को सुन रहे हैं वे सभी उनकी बात सुने और माने और पेड़ लगाएं। तो चलिए साथियों, ये थे श्रीनिवास राव जी जिन्होंने अपनी बात हमारे साथ साझा की, और जल्दी से अपने अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं उनका क्या कहना है। हेलो रेनबो।
3: हेलो नमस्ते।
1: नमस्कार नमस्कार मधुलिका जी, स्वागत है आपका। उस समय आपका कॉल कट हो गया था।
3: जी जी मैडम।
1: हाँ जी,
3: क्या हर घर के सामने पेड़ लगाना चाहिए मैडम?
1: बिल्कुल लगाना चाहिए, लेकिन उसका संरक्षण भी उतना ही अहम है।
3: लगाना चाहिए पानी। और आजकल क्या है, हमारा बेटा एडवोकेट है ना
1: जी,
3: तो लॉ का वो जो रहता ना कोर्ट,
1: जी हाँ जी हाँ,
3: वहाँ पे जज बना के भी बुलाते करते ना आजकल कॉलेजों में,
1: जी हाँ,
3: तो आजकल पेड़ दे रहे हैं उन लोग।
1: बहुत अच्छी बात बहुत अच्छी बात।
3: अभी तक दो मिले,
1: बहुत अच्छे, ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। बहुत अच्छी बात आपने साझा की मधुलिका जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
3: एडवोकेट बन गया वो,
1: बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत अच्छी बात। और जहाँ तक मुझे ध्यान है कि स्वर्गीय नीरज जी आज भले हमारे बीच में नहीं है, पर उनका भी पर्यावरण के प्रति प्रेम जो है बहुत बहुत ज्यादा था, बहुत मतलब अगाढ़ प्रेम था उन्हें भी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो साथियों ये थी निशा जी मधुलिका जी जिन्होंने हमारे साथ अपनी बात साझा की, और यहाँ पर हम बढ़ते हैं मैसेजेस की और मैसेज भेजा है अश्विन फ्रॉम कोटी कुशाल मार्केट। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा अश्विन जी, सभी को जय श्री कृष्णा कह रहे हैं, हम सभी की ओर से आपको भी जय श्री कृष्णा, और कह रहे हैं कि आप और निशा जी, श्रुति जी, जयश्री जी, आप लोग रेगुलर आते रहिए। भाई रेगुलर हम आएंगे, बाकी जो नवागंतुक है उन्हें भी तो मौका देना चाहिए ना अश्विन जी। तो चलिए यहाँ पर हम, आपने एक प्यारा सा मैसेज भेजा है उसी ओर बढ़ते हैं। ये किताबी नहीं जीवन का गणित है, यहाँ दो में से एक गया तो कुछ भी नहीं बचता, चाहे जीवन साथी हो या दोस्त। बहुत खूब। और आगे लिखते हैं कि जन्म के साथ जीव तो मिल जाती है, परंतु उसका सदुपयोग करने की कला तो सारा जीवन बीत जाने के बाद भी शायद नहीं आती। बिल्कुल सही कहा आपने। और आगे लिखते हैं कि वक्त के पहले बोले गए शब्द और मौसम के पहले तोड़े गए फल दोनों ही व्यर्थ होते हैं। कैसे खिलेंगे रिश्तों के फूल अगर ढूंढते रहेंगे हम एक दूसरे की भूल। वाह क्या बात है, बहुत ही प्यारा मैसेज आपने भेजा है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत आपका मैसेज पढ़ के बहुत अच्छा लगा अश्विन जी। और इनफैक्ट जी हाँ, मैंने आपसे बात करके इसीलिए कहा क्योंकि आपके मैसेज में जो जीवंतता है ना वो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि आपसे बात ही हम कर रहे हैं, प्रत्यक्ष बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। और साथियों यहाँ पर हम रुकते हैं एक छोटी सी जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए,

0: रेनबो 101.9।
1: और साथ ही आकाशवाणी के उसी एफएम रेनबो 1.9 पर आप सुन रहे हैं हेलो रेनबो, जहां पर आज हमने आपसे पूछा कि पर्यावरण को बचाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। उस पर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं उनका क्या कहना है। हेलो रेनबो।
2: हरिओम।
1: हरिओम हरिओम, स्वागत है विलास जी, कैसे हैं आप?
2: मैं बहुत अच्छा हूँ और मैं जानना चाहूंगा आप कैसे हैं।
1: बस ईश्वर का उपकार है, आप सभी की शुभकामनाएं हैं, आप सभी का प्यार है, और क्या चाहिए बताइए अच्छी जिंदगी के लिए।
2: नहीं, हमारा प्रेम तो है, लेकिन हमारे प्रेम को आप उसकी कीमत ही नहीं करते। आप अभी 2-3 महीने में एक बार आ रहे हो, हमको बड़ा दुख होता है।
1: नहीं, ये मत कहिएगा कि हम कीमत नहीं करते हैं, क्योंकि आपका प्यार है तभी तो हम जो है यहाँ पर हैं। और जहाँ तक आने की बात है तो जब जब बुलाया जाता है आ जाते हैं। खैर बताइएगा।
2: ठीक है, मतलब हमारी ये इच्छा है, मेरी इच्छा प्रदर्शित कर दी है कि आप सप्ताह में कम से कम 1 या 2 दिन अवश्य आइएगा, हमको हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी।
1: चलिए हम हमारे उच्च अधिकारियों से यही बात कहेंगे, बताइएगा आज के विषय पर बात करते हैं।
2: हाँ जी, अब आज पर्यावरण दिवस हम मना रहे हैं और यह तो सारे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र पर भी मनाया जा रहा है
1: जी।
2: तो इस मतलब पर्यावरण की सुरक्षा के दृष्टि से छोटे छोटे कदम हमको उठाने हैं, जैसे कि अभी वाहन चलाते हैं
1: जी हाँ,
2: और सिग्नल पर जब हमारे 4-पहिया वाहन या 2-पहिया वाहन हम रोक देते हैं
1: जी जी,
2: तो आशा क्या है कि सिग्नल पर लगभग 1 मिनट या उससे भी
1: अधिक के सिग्नल्स होते हैं जी हाँ जी हाँ,
2: उस समय अगर से हम हमारा इंजन बंद कर देते हैं तो पर्यावरण के दृष्टि से उसका महत्व है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
2: तो ये एक काम तो बहुत छोटा काम है, लेकिन इसका अगर से हर कोई इस तरह से ये करने लगेगा।
1: नहीं, कार्य छोटा है पर इसका इम्पैक्ट काफी बड़ा पड़ता है। बहुत सही कहा आपने।
2: हाँ जी, तो ये मैं अनुभव भी करता हूँ, क्योंकि मैं स्वयं जब मेरी 4-पहिया वाहन जो है मेरा, मैं जब सिग्नल पर रुकता हूँ तो कई जगह पर तो 1 से 2 मिनट भी लग जाते हैं।
1: बिल्कुल।
2: तो मैं अपनी ओर से जैसे पहुंचता हूं सिग्नल पर, मैं वाहन बंद कर देता हूं।
1: बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। यहां पर एक विषय मुझे आपसे ये कहना है कि कहने के लिए तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो करना चाहिए, पर करते बहुत कम है। ये बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
2: जी, मैं स्वयं करता हूं।
1: बहुत अच्छी बात।
2: दूसरी बात ये है कि आजकल जो नए 4-पहिया वाहन आ रहे हैं ना, तो वो क्या है, सिग्नल पर अपने आप वो बंद हो जाते हैं।
1: बहुत अच्छी बात जी।
2: अपने आप बंद हो जाते हैं और जैसे ही हम फिर से क्लच के ऊपर पैर देंगे तो
1: स्वतः
2: ऑन हो जाता है।
1: जी हाँ,
2: इंजन चालू हो जाता है
1: जी।
2: तो ये भी एक बहुत अच्छी बात हुई है वाहन के दृष्टि से।
1: बिल्कुल।
2: और दूसरी बात ये मैं कहना चाहूंगा कि अभी हम बाहर तो जा करके पेड़ लगाना वगैरह ये हमसे शायद भी होता होगा, लेकिन कम से कम हम हमारे घर के गैलरी में छोटे छोटे पौधों को तो
1: बिल्कुल सही, बहुत सही, बहुत सही बात आपने कही। और बहुत इस विषय पर कहने के लिए बहुत कुछ है पेनुरकर जी, बट चूंकि हमें यहाँ पर समय जो है परमिशन नहीं दे रहा है, इजाजत नहीं दे रहा है, तो फिर कभी हम पुनः इस विषय को लेंगे और आपसे बात करेंगे। आप जुड़े उसके लिए बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो साथियों, ये थे विलास जी जिन्होंने अपनी बात हमारे साथ साझा की, और हमारे साथ अब स्टूडियो में आ चुके हैं राजेश जी, जो आगे अपने इस शो को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल 2 बजे से आपके साथ आएंगे। तो राजेश जी, ఇప్పుడు ఏంటి విశేషాలు?
3: ఏంటి మొత్తం మీరే చెప్పేశారు. సో ఈ రోజు మనకి వరల్డ్
1: ఎన్వైరన్మెంట్ డే. అవును.
3: సో ఈ రోజు మనం దాని గురించి కూడా మాట్లాడుకోబోతున్నాం.
1: ఓకే.
3: దాంతో పాటు అండ్ హైదరాబాద్ లో మనకి బుక్స్ మనకి అకాడమికే స్టార్ట్ అవుతుంది కదా.
1: అవును.
3: సో మనకి రోజు రోజు రేట్స్ పెరిగిపోతున్నాయి.
1: అవును.
3: సో పేరెంట్స్ కి ఇది ఒక పెద్ద టాస్క్ అని
1: చెప్పొచ్చు. అవును.
3: సో వాళ్ళకి అందుబాటులో ఉండే రేట్స్ ఉంటాయి కదా,
1: అవి
3: ఎక్కడెక్కడ దొరుకుతాయి బుక్స్, దాని గురించి రోజు మాట్లాడుకుంటాం.
1: అరే వెరీ నైస్, వెరీ నైస్, ఇది అందరికి హెల్ప్ఫుల్,
3: పేరెంట్స్ కి హెల్ప్ఫుల్, దాని గురించి
1: మాట్లాడుకోవాలి. ఇన్క్రెడిబుల్ ఇండియా. థ్యాంక్ యూ రాజేష్ గారు. ఇప్పుడు తొందరగానే మీకు ఇచ్చేస్తాను మైకు, అంతవరకు ఒక చిన్న కమర్షియల్ బ్రేక్ తీసుకుంటాము.

0: ರೇನ್ಬೋ 101.9
1: ప్రజా పాలన ప్రగతి ప్రణాళిక విజయవంతంగా కొనసాగుతోంది.
2: ఐదు దశల్లో 99 రోజుల ప్రత్యేక కార్యక్రమం, శాఖల వారీగా 10 థీమ్లతో ప్రత్యేక కార్యాచరణ. ఇప్పటికే పరిసరాల పరిశుభ్రత విజయవంతం కాగా వైద్య రంగంలో అద్భుతమైన అడుగులు వేయబడ్డాయి. అరైవ్ అలైవ్ తో ప్రాణాలకు రక్షణ, సంక్షేమ వారోత్సవ, డ్రగ్స్ నిర్మూలనకు కఠిన చర్యలు, విద్య, వైద్యం, వ్యవసాయం, పర్యావరణం మొదలైన 10 కీలక రంగాలలో సమస్యల పరిష్కారానికి పటిష్టమైన చర్యలు. ప్రగతి పథం, సకల జనహితం, మన ప్రజా ప్రభుత్వం.
0: FM Rainbow 101.9
3: और साथियों आकाशवाणी के उसी एफएम रेनबो 101.9 पर आप सुन रहे हैं हेलो रेनबो, जहां पर आज हमने आपसे पूछा कि पर्यावरण को बचाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है. इस पर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, देखते हैं उनका क्या कहना है. हेलो रेनबो.
4: तो कुछ से रहना है तो राधे राधे कहना है. राधे राधे प्रीति जी.
3: राधे राधे. हमें तो सदैव सुख चैन से ही, हम तो हमेशा सुख चैन से ही रहेंगे और आपके कहने पर राधे राधे अवश्य कहेंगे. मुरली जी कैसे हैं आप?
4: एकदम बढ़िया. आप कैसे हैं प्रीति जी?
3: बस आप बढ़िया हैं तो हम भी बढ़िया ही रहेंगे मुरली जी.
4: मगर बहुत ही लंबा समय ले रहे प्रीति जी आप आने के लिए. तो
3: चलिए जब बुलाया जाता है तब हम आ जाते हैं.
4: बस यही लगता हूँ करते रहिए, मगर लंबा समय लेते रहिए, बस ऐसा कहते रहिए और समय लेते रहिए.
3: चलिए हम आपकी बात अपने उच्चाधिकारियों तक पहुंचा देंगे, बताइएगा.
4: प्रीति जी
3: जी,
4: अगर पर्यावरण को रक्षा करना है तो अपनी तरफ से तो कुछ भी छोटा चीज भी करिए तो अच्छा रहता. अभी मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज करता हूँ.
3: बहुत अच्छे.
4: और जो है टू व्हीलर पे जाना है तो दो जने ही जाते, अगर कुछ भी जरूरत है इमरजेंसी है तो एक जने के लिए.
3: बहुत सही.
4: और एक बात कहता हूँ मैं प्रीति जी, आज जो चल रहा है विश्व में, हो सके अपना कोरोना जैसा काल आई तो अच्छा रहता शायद मेरे ख्याल से.
3: पर्यावरण की दृष्टि से बिल्कुल सही कहा आपने.
4: पर्यावरण की दृष्टि से वो कोरोना का जैसा काल आए तो अच्छा रहता पर्यावरण के वास्ते.
3: बहुत सही कहा.
4: फिर वो जीवित रहेगा.
3: जीवित रहेगा,
4: फिर पुनर्जीवित होके इस प्रकृति एक अच्छा मतलब हेल्दी पर्यावरण रहेगा.
3: बहुत सही बात आपने बताई मुरली जी. इस पर, इस विषय पर बहुत ही आपसे और भी बहुत हम बात करना चाहते थे, पर चूंकि समय हमें यहाँ से आगे ज्यादा जाने की इजाजत नहीं देता है तो हम यहीं पर आपसे विदा लेते हैं. साथियों मैं पुनः इसी वादे के साथ विदा लेती हूँ कि बहुत जल्द पुनः आपसे मुलाकात करने आऊंगी. तब तक आप सुनते रहेगा रेनबो एफएम, करते रहिए अपनी लाइफ को रंगीन क्योंकि रेनबो के साथ लाइफ रंगीन. और राजेश जी आपको अगले कुछ ही पलों में आपसे जुड़ेंगे और मैं आपसे यही कहकर धन्यवाद कहती हूँ कि

0: मुक्त भारत अभियान
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हाल।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: मिर्विंटुनारू आकाशवाणी रेनबो एफएम ताजा ट्यून्स।
4: एफएम रेनबो 101.9

101.9। ये आकाशवाणी हैदराबाद है, FM रेनबो 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। पेश खिदमत है उर्दू प्रोग्राम नए रंग।

डॉक्टर माइक पर सिलसिले तहत डॉक्टर डेंटल केयर इश्यूज केयर एंड प्रिकॉशंस उनवान पर डॉक्टर एम के आलिया शरीफ से की गई बातचीत हम पेश करेंगे। इसके बाद आप सुनेंगे गीत सुरीले गाते जा में कुछ सुरीले गीत। प्रोग्राम के आखिर में पेश होगा पयाम शब। आइए सामीन, प्रोग्राम नारंग का आगाज करते हैं क़िरअत-ए-कलाम-ए-पाक से।

मौका महल की नज़ाकत के मुताबिक सरमाए को अकल व दानाई से खर्च करने का नाम किफ़ायत शायरी है। बास आदमियों को अपने बुज़ुर्गों की मीरास इस क़दर मिल जाती है कि वो इसकी आमदनी से बग़र मेहनत किए अपना गुजारा बखूबी कर सकते हैं, लेकिन दुनिया में ज़्यादातर ऐसे आदमी हैं जो अपनी ज़ाती मेहनत की उजरत से बसर करते हैं। मीरास की आमदनी या अपनी मेहनत की उजरत से वही लोग फ़ायदा उठाते हैं जो नेक चलन और दूर अंदेश होते हैं, क्योंकि नेक चलनी इंसान को माश पैदा करने पर आमदा करती है और दूर अंदेशी खर्च करने का तरीक़ा सिखाती है। दूर अंदेश आदमी आमद और ख़र्च को अपनी नज़र में रखता है, वो आगे और पीछे दोनों तरफ देखता रहता है, वो बेज़रूरत खर्च करने को सख्त गुनाह जानता है। अगर आमदनी कम होती है तो अपनी ज़रूरतों को मुख्तसर कर देता है, हत्तुल इम्कान कुछ न कुछ बचाता है ताकि बेकारी, बीमारी, खहत और इत्तफाकी ज़रूरत के वक्त काम आए। वो मौका पर दूसरों की दस्तगिरी करता है। ऐसा आदमी किफ़ायतशार कहलाता है। जो शख्स कम फहम और कोता अंदेश है, वो आगे पीछे नहीं देखते, ना आमद की खबर रखते हैं ना खर्च की, वो ज़रूरी और गैर ज़रूरी फजूल कामों में तमीज़ नहीं करते, सिर्फ मौजूदा हालात को देखते हैं, बच्चों की तरह अपनी हिर्स हवस पूरी करने पर आमदा रहते हैं, इत्तेफाकी ज़रूरतों के वास्ते कुछ नहीं बचाते, इसलिए बहुत जल्द मुसीबतों में गिरफ्तार हो जाते हैं। ऐसे लोग फजूल खर्च या मुसरिफ कहलाते हैं। किफ़ायत शायरी इख्तियार करने और फजूल खर्ची से बचने के लिए चंद बातें याद रखने के काबिल हैं। अपनी आमदनी और खर्च का हिसाब रखें। जो खर्च महज शेखी जताने, फ़खर करने, इतराने की गर्ज से किए जाते हैं, इनमें एक कौड़ी का उठा देना भी गुनाह समझो। जो कुछ खरीदो नकद दामों से खरीदो, खर्च के तौर पर कोई चीज़ हरगिज ना लो, अगरचे कि वो थोड़ी देर के वास्ते ही हो। गरीब आदमी जो अपनी मेहनत की उजरत से गुजरान करते हैं, अगर वो किफ़ायतशारी के तरीक़े पर चलते हैं और अपनी आमदनी में से कुछ पस अंदाजी या बचत करते हैं, तो एक दो नस्लों के बाद इनकी आने वाली औलाद अच्छी खासी दौलतमंद मुरफ़हाल बन जाती है। इस तरह जो दौलतमंद फजूल खर्ची की बला में मुब्तला होते हैं, वो बहुत जल्द मुफलिस और तहदस्त होकर गदागिरी या बदमाशी करने लगते हैं। जो शाखर्ष थे दुनिया में वो जलील हुए, जो शाखर्ष थे दुनिया में वो जलील हुए, जो जानते थे किफ़ायत वो खुद कफील हुए। अक्सर गरीब आदमी ऐसे होते जो किफ़ायत शारी करके कुछ पस अंदाजी कर सकते हैं, मगर इसके महफूज रखने का मौका इनको मैसर नहीं है। ऐसे लोगों की आसानी के वास्ते सरकार ने हर बैंक डाकखाने में अमानत रखने का इंतज़ाम कर दिया है। एतदाल व तवाज़ुन के साथ खर्च करना किफ़ायत शारी का दस्तूर हकीकी है। हर फर्द अपनी आमदनी और खर्च में तवाज़ुन को मुकदम रखे और मईशत को मुस्तहकम कीजिए। किफ़ायत शारी खुशहाल

जिंदगी गुजारने का बेहतरीन जरिया और फजूल खर्ची बर्बादी का पेश खैमा है। खनाज पसंदी और तवक्कुल किफायतशारी से पैदा होता है। इससे वसायल दुरुस्त होते हैं, इसराफ जैसे गुनाह से बचा जा सकता है। मियाना रवि और किफायतशारी कामयाबी की कलीद है। फरमाने नबवी सल्लल्लाहु तआला सल्लम है कि जो शख्स मियाना रवि इख्तियार करता है, अल्लाह पाक उसे मालदार बना देता है। जो फजूल खर्ची करता है, अल्लाह पाक उसे मोहताज कर देता है।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे हरफे ताबिंदा, पेश कर रहे थे मोहम्मद असमतुल्ला खान। अब आइए दोस्तों सुनते हैं डॉक्टर माइक पर सिलसिले तहत डेंटल केयर इश्यूज, केयर एंड प्रिकॉशंस, उन्वान पर डॉक्टर एम के आलिया शरीफ से की गई बातचीत।
1: सामईन अकराम, डॉक्टर माइक पर प्रोग्राम जिसको आप बेहद पसंद करते हैं और बरसों से आप माहिरीन और डॉक्टर्स के मशवरों से मुस्तफीद होते आए हैं, और हमारी ये कोशिश और सही होती है कि इसमें शहर के नामवर डॉक्टर्स को शामिल किया जाए जिनके मुफीद मशवरे और तजुर्बात की बुनियाद पर आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। चुनाचे आज दांतों की बीमारियों और इसके इलाज के बारे में हम शहर के नामवर डेंटिस्ट डॉक्टर आलिया शरीफ से बात करेंगे, जो हमें दांतों के मुख्तलिफ अमराज, एहतियाती तदाबीर और नई टेक्नोलॉजी में जो पेशरफ्त हुई है, इलाज के तरीक़ेकार में जो पेशरफ्त हुई है, उस ताल्लुक़ से हमें बताएंगी। डॉक्टर आलिया शरीफ, इब्तिदा में आप सामईन को ये बताएं कि दांतों की बीमारियों में जो आजकल ज़्यादा बढ़ावा दिख रहा है या इंक्रीज़ हुआ है इसमें, तो इसकी वजूहात क्या, आप इसको एक लाइफस्टाइल चेंज कहती हैं, करार देती हैं, या फिर या ये कि ये एक जेनेटिक या फिर पैदाइशी डिसऑर्डर होता है?
2: ये जो आप दांतों की बीमारियां बोल रहे हैं सर,
1: जी
2: थोड़े कंजेनेटल भी होते हैं थोड़े, और ज़्यादातर हमारे इंडिया में जो है इम्प्रॉपर हाइजीन की वजह से दांत खराब होना, जैसे कि हम लोग दांतों पे इतना ध्यान नहीं देते,
1: निगहदाश्त नहीं करते हैं, साफ सफाई नहीं करते
2: जी
1: हैं।
2: जी जी हालांकि जैसे कि हम लोग बोलते हैं हर बार खाना खाने के बाद कुल्ला करना बहुत ज़रूरी है, दूसरा आके दो बार ब्रश करना बहुत ज़रूरी होता है सुबह और रात को सोने से पहले, कोई भी फूड पार्टिकल या खाने का दाना या कुछ भी मीठी चीज़ अगर दांत में लग जाती है तो वहाँ पे एक ऐसा रिएक्शन चलता है जो ये जो सुक्रोज रहता है
1: जी
2: दांत को चिपक के, वहाँ पे एक रिएक्शन होने की वजह से छोटी सी कैविटी स्टार्ट होती है। मगर हम लोग ज़्यादातर क्या खाते हैं, खाते ही सो जाते हैं या ब्रश नहीं करते हैं, ये भी एक रीज़न वजह है कि आपके दांत कीड़ होने में। और दूसरा क्या है, हम लोग जब तक दर्द नहीं होता है डॉक्टर के पास अप्रोच नहीं करते हैं, क्या है कि जब दर्द होगा तब जाएंगे एक, तो डेंटल अवेयरनेस जो है, दांतों का अवेयरनेस जो है हमारे इंडिया में तकरीबन अभी अभी आ रहा कि उसको भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग दांत मेंटेन नहीं करेंगे तो इसके वजह से बहुत सारे दूसरे मेडिकल प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं,
1: अच्छा,
2: जैसे कि दांत में बहुत ज़्यादा कैलकुलस और तार-तार हो गया तो हार्ट का इन्फेक्शन, जैसे कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी बोलते हैं।
1: अच्छा,
2: एंड अगेन अगर आप दांत गिर गए मसूड़ों की बीमारी की वजह से, तो दांत जब गिर जाएंगे तो खाने चबाने के लिए नहीं रहेंगे,
1: सही,
2: अगेन उससे दूसरा प्रॉब्लम आएगा, आपको खाना नहीं हजम होगा, पेट में जाएगा, इफ़ आपके दांत नहीं है च्यू करने के लिए तो अगेन आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आएगा।
1: अच्छा,
2: तो रिलेटेडली क्या है,
1: तो ये एक चेन रिएक्शन,
2: चेन रिएक्शन है। इट्स नॉट लाइक दैट ओनली डेंटल है, डेंटल आपको ओरल हाइजीन इसलिए मेंटेन करना है, इट इफेक्ट्स ए कंप्लीट बॉडी वाइटल ऑर्गन्स अलोंग विथ योर, जैसे कि

0: दांत साफ हैं आपके, आप किसी से बात कर रहे हैं, अगर कैलकुलस तार तार फॉर्म हो गया है तो बदबू भी
1: आ
0: आने लग
1: सकती
0: आ सकती है। और पेशेंट्स हमेशा ये कंप्लेन करते हैं कि मैडम हम ब्रश करते हैं तो खून निकलता है, इस डर की वजह से हम लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। देखिए कोई भी चीज़ अगर इन्फेक्शन हो गया है तो सूजन आ जाती है,
1: अच्छा
0: अगर उसको छूते ही खून निकलता है। हम जब सफाई करा लेंगे तो इन्फेक्शन रिड्यूस हो जाएगा और आपका इन्फ्लेमेशन भी, जो सूजन है वो भी कम हो जाएगी। ये कम होने से आपका खून भी जो बहना है
1: बंद
0: बंद हो
1: बंद
0: जाएगा। तो एक ये है कि आपका ओरल हाइजीन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट,
1: जी
0: तो अगर आप उसको साफ रखेंगे तो आपके दांत मजबूत रहेंगे। जैसे कि हम लोग बोलते हैं सर कि आपकी बिल्डिंग को पिलर्स जितना स्ट्रांग है हमारे दांतों के लिए, हमारी हड्डी जो है ना वो
1: अच्छा
0: बहुत स्ट्रांग रहनी चाहिए ताकि लंबे अरसे तक हम लोग अपना क्या बोलते हैं च्यूइंग एफिशिएंसी मेंटेन करें, मास्टिकेशन अच्छा होगा एंड अच्छे अच्छे से अच्छी चीज़ें खा सकें।
1: जी डॉक्टर आलिया, अक्सर ये देखने में आता है कि जब भी दांतों के दर्द या दांतों की बीमारी का हम जिक्र करते हैं या देखते हैं तो ब्लीडिंग गम्स एक कॉमन प्रॉब्लम नज़र आता है,
0: जी जी
1: तो इसके क्या वजूहात हैं और इसको कैसे रोका जा सकता है और क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए?
0: जी ये बहुत अच्छा है सर। ज़्यादातर जो पेशेंट्स हैं या जो जो लोग हैं डॉक्टर के पास विजिट करते हैं तो मेन उनका जो प्रॉब्लम रहता है कि दांतों से खून बह रहा है, और कभी कभी सो के उठते ही मैडम खून निकलता है थूकने पे करके बोलते हैं। इसका ये वजह है कि दांत ऊपर से बहुत साफ दिखते हैं मगर
1: अच्छा
0: मसोड़े के अंदर पूरा गंदगी जमी हुई रहती है सर। जैसे कि मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देती हूँ, जब हम लोग बाथरूम साफ़ नहीं किए, तकरीबन मैं इसलिए एग्जांपल दे रही
1: जी
0: हूँ
1: जी जी
0: ताकि लोग
1: समझने में
0: समझ में
1: आसानी हो।
0: आसानी हो जाएगी, तो एक थिक टाइम काइंड ऑफ कैलकुलस जमा हो जाता है, तो हम लोग उसको डिफरेंट मटेरियल डाल के साफ़ करते हैं। वैसे ही दांतों में क्या है, अगर आप रोज़ाना 2 बार ब्रश नहीं कर रहे, और एक वजह ये भी हो सकती है कि हार्मोनल चेंजेस,
1: अच्छा
0: औरतों में ज़्यादातर हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से डिपॉजिट ज़्यादा होते हैं, और थोड़े थोड़े पॉपुलेशन में क्या है हार्मोनल चेंजेस की वजह से बदबू भी आती है।
1: ओके
0: तो ओरल हाइजीन को 3 तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि एक तो इम्प्रॉपर ब्रशिंग, और रेगुलर चेकअप जो है वेरी मैंडेटरी है सर। जैसे कि 6 महीने, हर एक 6 महीने आप अपने जो भी नज़दीकी डेंटिस्ट हैं उनको विजिट करिए और उनसे सलाह मशवरा लीजिए। ज़रूरी है तो सांसों की, दांतों की सफाई, ऐसा तो मैंडेटरी है सर कि हर एक 6 महीने आप दांतों की सफाई कराएं। और जब ये आप जो क्वेश्चन मुझे पूछे कि ब्लीडिंग गम्स का क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, तो जब हम लोग दांतों में जो गंदगी जमी हुई है, सूजन है ब्लीडिंग गम्स है, हम लोग जब सबजिंजिवल स्केलिंग बोलते हैं सर इसको, तो मसूड़े के अंदर से और दांतों के ऊपर से जो साफ सफाई करते हैं उसको बोलते हैं सुप्रा जिंजिवल स्केलिंग। अगर ये सफाई आप करा लिए तो आपका ब्लीडिंग ऑफ कम्स जो है ब्लीडिंग कम हो जाएगा और आपके दांत स्वस्थ रहेंगे,
1: जी
0: हाँ, और फ्रेश फील करेंगे आप। और दूसरा है कि ब्लीडिंग ऑफ गम्स इस हद तक हो जाता है ताकि जो आपकी हड्डी दांत को पकड़ के रहती है वो हड्डी घुल जाती है।
1: ओहो
0: जब आपकी हड्डी घुल गई समझिए, तो दांत धीरे धीरे दांतों के बीच में गैप आना शुरू हो जाएगा,
1: तो ये काफी सीरियस भी हो सकता
0: सीरियस भी
1: है।
0: हो सकता है और आप इसमें आप अपना दांत भी गंवा सकते हैं। तो ब्लीडिंग ऑफ गम्स को जो है आप इग्नोर ना करें, नज़दीकी डेंटिस्ट के पास, नज़दीकी दांत के डॉक्टर के पास जाएं, उसका सलाह मशवरा करें, उसका ट्रीटमेंट कराएं, बहुत ज़रूरी होता है सर।
1: समय अभी डॉक्टर आलिया शरीफ ने बताया कि ब्लीडिंग गम्स को बिल्कुल भी इससे फौरन इसका इलाज करवाना चाहिए, डेंटिस्ट से अप्रोच होना चाहिए, सीरियस लेना चाहिए, वरना ये आगे चलकर मसले पैदा कर सकता है। और एक दूसरी बात जो ज़्यादातर हम देखते हैं कि आजकल उम्र का कोई क्राइटेरिया नहीं रहा, बच्चों में भी कुछ
0: जी जी
1: बहुत जल्द जो है दांतों की बीमारियां
0: जी
1: देखने
0: जी
1: में आ रही हैं, इसकी वजूहत क्या है?
0: सर बच्चों में जो है ना सर, आपको मेन ये बता देती हूँ कि आजकल जंक फूड बहुत ज़्यादा हो गया है, तो दूसरा क्या है कि चीविंग एफिशिएंसी जो फूड के हैं, अब मेन हम लोग न्यूट्रिशनिस्ट न्यूट्रिशियस फूड अगर ले लिए तो बच्चों में जो क्या है शुगरी फूड्स ज़्यादा हो गए हैं, और रात को ब्रश करके जो सोना है बच्चों में, हम लोग सोचते हैं कि चलो

0: 3-4 साल के बाद ब्रश शुरू करेंगे, ऐसा नहीं है। एज सुन एज आपके मुंह में एक दो दांत में आए तो बच्चे को प्लीज़ तुरंत आप दांत का ब्रशिंग शुरू कर दीजिए। दूसरा आके बच्चे को जो है पेरेंट्स, मदर एंड फादर, दे हैव टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, उनका जो ख्याल रखना है, 1-7 साल तक उनके ब्रशिंग के ऊपर आप ध्यान देना है कि आप सुबह भी उनको रात को ब्रशिंग कराएं ये। और दूसरा क्या है, नॉर्मली आजकल क्या हो रहा है, बॉटल फीडिंग, दूध
1: जी
0: का बॉटल दे के पिला दें, सुला देना। दांत हैं कभी कोई 3 साल, कोई 4 साल, इसमें जो हम लोग शुगर कंटेंट मिलाते हैं तो उसके वजह से है ये जो शुगर लेयर दांतों के ऊपर रह जाके, अब वहाँ पे मैंने आपको बताया कि दांतों
1: जी
0: के साथ एक रिएक्शन हो के वहाँ पे फिर से एक कैविटी शुरू होती। और दांतों में आगे ज़्यादातर आप बच्चों को देखें कि आगे के दांत जो हैं ऊपर के और नीचे के कीड़ खा जाते हैं एक एक एक
1: अच्छा
0: एक करके, और माँ बाप परेशान हो जाते हैं क्या हो गया। तो उसको अर्ली चाइल्डहुड केरीज बोलते हैं,
1: ओके
0: और नहीं तो रैम्पेंट केरीज बोलते हैं, जो केरीज बच्चों के दूध के दांत में आते हैं। हाँ, तो इम्प्रॉपर कैल्शियम डिफिशियंसी भी होता है, और दूसरा आके ये मेन बॉटल फीडिंग से होता है। तो
1: सो
0: इसका जो,
1: बॉटल फीडिंग आप सजेस्ट कर रहे हैं कि इसको कम से
0: हाँ,
1: कम
0: कम से कम
1: इस्तेमाल में लाना
0: इस्तेमाल में
1: जाए।
0: लाया, क्योंकि सर बॉटल फीडिंग में क्या है, हम लोग शुगर ऐड करके देते हैं
1: अच्छा
0: और बच्चा निकालते ही सो जाता है,
1: हाँ
0: ऐसा नहीं
1: हाँ
0: है कि वो ब्रश करा रहे। तो
1: सही
0: उसको दांत ब्रश कराएं, एक एज तक आप उसको स्टॉप करें, ग्लास से दूध पिलाएं और सोते समय बच्चे को ब्रश करा के सुलाएं। और ये जो अर्ली चाइल्डहुड केरीज हैं, रैम्पेंट केरीज हैं, आप तुरंत अब जो भी नज़दीकी डॉक्टर हैं, डेंटल डॉक्टर, उनके पास लेके जाके उसका इलाज कराएं। और आजकल नेग्लिजेंस क्या है ना सर, कि चलो भाई दूध के दांत है, गिर जाएंगे, परमानेंट दांत आएंगे, अच्छे आएंगे। तो जो भी है एक टाइम रहता है सर दूध के
1: जी
0: दांत का गिरने का भी, अगर अगर वो पहले ही गिर गए या लेट से गिरे, जो दांत अंदर से आ रहे हैं यानी आपके परमानेंट दांत, वो सही अलाइनमेंट में नहीं आएंगे। तो हम लोग पेशेंट्स को यही बोलते हैं, दूध के दांत का प्रोमिनेंस क्या है, आप उसको कीड़ लगा तो तुरंत उसको आप सीमेंट भराइए, या उसका ज़्यादा कीड़ खाया है तो उसको, बच्चों बड़ों में जैसे रूट कैनाल बोलते हैं सर, बच्चों में पल्पेक्टमी बोलते हैं, तो पल्पेक्टमी कराइए उसको। जब उसका टाइम आएगा, एज आएगा बच्चे का, तब वो दांत गिरेगा, तो जो आप भी उनका परमानेंट दांत है वो आएगा। समय के पहले गिर गया या समय के लेट से गिरा तो परमानेंट दांत जो आएंगे वो टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे।
1: अच्छा
0: तो टेढ़े मेढ़े होने के बाद, बड़े होने के बाद फिर क्लिप लगाना पड़ेगा, तो ये प्रोसेस रहता है सर। तो आप इग्नोर ना करें बच्चों में।
1: अभी आपने अलाइनमेंट की बात की, ये अक्सर मैंने देखा है और पढ़ने में भी आता है कि बहुत सारे खासतौर पे बच्चियों में माँ बाप ज़्यादा कंसर्न होते हैं कि
0: जी जी
1: उसके ब्यूटी कॉन्शियस होने से वो
0: जी
1: अलाइनमेंट की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं, ना
0: जी
1: कि दांत की सेहत की
0: जी
1: तरफ,
0: जी
1: जैसा
0: बहुत
1: आपने क्लिप के इंस्टॉल करने की बात की। तो इसको दांतों की सेहत को ब्यूटिफिकेशन से जोड़ना कहाँ तक आप
0: नहीं, ये
1: इसको दुरुस्त
0: आपका
1: मानते हैं?
0: क्वेश्चन बहुत बहुत बहुत ये है सर। मैं आपको पहले बता देती हूँ कि डॉक्टर कोई भी
1: जी
0: अब ब्यूटिफिकेशन को इम्पोर्टेंस नहीं देते सर। फर्स्ट विल गिव द इम्पोर्टेंस टू द हेल्थ ऑफ द टीथ,
1: हाँ दर
0: यानी सेहतमंद रहना दांत। मैं आपको एक छोटा एग्जाम्पल बोलती हूँ, अगर टेढ़े मेढ़े दांत रहे तो ब्रश करना आसान नहीं होता है,
1: सही है
0: अगर वही दांत अगर सीधे रहें तो ब्रश करना
1: आसान
0: आसान हो
1: होता
0: जाता है। तो अगर टेढ़े मेढ़े दांत रहे तो गंदगी जमेगी, तो दांतों की सेहत कमज़ोर
1: खराब
0: हो
1: हो जाए।
0: जाएगी और ख़राब हो जाएगी। दांत अगर सीधे रहे, तो यहाँ हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट यानी क्लिप का ट्रीटमेंट जो भी बोलते हैं आपको, कॉन्सेप्ट ये है टू रीगेन द हेल्थ ऑफ द टूथ, हम वापस लाना चाहते हैं दांतों के सेहत को, साथ ही साथ ब्यूटिफिकेशन को, एस्थेटिक, उसको हम लोग एस्थेटिक बोलते हैं, खूबसूरत दिखना। औरतों में ही नहीं सर, आजकल बच्चों में, बड़ों में, लड़कियों में, सब में ये हो गया है कि अच्छे दिखना है। कोई भी प्रोफेशन में हमको खूबसूरत दिखना है, अच्छा
1: हाँ
0: दिखना है,
1: प्रेजेंटेबल रहना है।
0: हाँ
1: जी
0: प्रेजेंटेबल रहना है। तो मेन क्या है, फर्स्ट वी आर कंसर्न्ड अबाउट द हेल्थ ऑफ द टूथ, हम लोग क्या है सेहत, दांतों की सेहत, उसके बाद हम लोग ब्यूटिफिकेशन अपने आप आ जाएगा सर।
1: जी जी
0: तो ऐसा है।
1: तो इस ताल्लुक से प्रिकॉशनरी मेजर्स आप क्या समझते हैं कि लेने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है क्या? नहीं, इसको एक सिस्टमेटिक इलाज के जरिए ही किया जा सकता है।
0: इंशाल्लाह सर, प्रिकॉशन इज़ बेटर दैन क्योर, इसीलिए बोले हैं
1: हाँ
0: आप
1: हाँ
0: प्रिकॉशन लेना।

0: बहुत ज़रूरी है। प्रिकॉशन ये है कि आप हर 2 बार ब्रशिंग करें रोज़ाना, और क्या बोलते हैं, माउथ वॉश यूज़ करें। दूसरा कि आप हर एक 6 महीना प्रिकॉशन है, आप डॉक्टर के पास विजिट
1: विजिट.
0: करें। अगर छोटा भी कैविटी है तो उससे हम लोग सीमेंट से भर सकते हैं। कैविटी बड़ा हो गया
1: जी.
0: तो दर्द चालू हो जाता है नस को टच होने की वजह से, फिर रूट कैनाल करना है, कैप लगाना है। तो प्रिकॉशन, और प्रिकॉशन लेने के बाद जो विजिट हम लोग डॉक्टर के पास करते हैं, दिस इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ प्रिकॉशन। तक हम लोगों को प्रॉब्लम बड़ा नहीं करना है, हमको वही प्रिवेंट कर देना
1: कंटेन कर
0: है।
1: देने का.
0: प्रिवेंट, हाँ ऐसे है ऐसे।
1: तो अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो अवेयरनेस भी बढ़ता है, तो दांतों के कई मसाइल सामने आते हैं, लेकिन जो अंदरूनी बातें होती हैं वो ज़्यादातर लोग इग्नोर करते
0: जी
1: हैं, कुछ मालूमात की कमी की वजह से या फिर डॉक्टर को विज़िट नहीं करने की वजह से.
0: जी
1: तो इमीडिएट क्या अलामत होती हैं, क्या इंडिकेशंस होते हैं जब आप समझते हैं कि डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी हो जाता है?
0: हाँ सर, ये अलामत जो आपको, आप जो पूछ रहे हैं, जैसे कि आप पहले पूछे ब्लीडिंग ऑफ गम्स है,
1: हाँ,
0: ये एक है। दूसरा कि दांतों के बीच में सांद आ जाना,
1: ओके.
0: मेरा खाना जाके फंस जा रहा। नॉर्मली एज, सर्टेन एज के बाद क्या होता है ना सर, हड्डी घुलती है बहुत सारे लोगों में।
1: जी.
0: तो क्या है ना, खाना फंस रहा, हम लोग उसको टूथपिक यूज़ कर रहे हैं, कोई बोलते हैं कि पिन यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब आप चीज़ें ना यूज़ करें, डॉक्टर के पास जाएं। दूसरा कि मेरे दांत घिस गए हैं, जो नॉर्मल मेन चीफ कंप्लेंट रहता है एज पेशेंट्स का। क्या है ना सर, हमारा हर रोज़ दांत घिसता है, सब माइक्रो मिलीमीटर्स में घिसता
1: हाँ,
0: है। तो
1: इट्स लाइक डिप्रिसिएशन.
0: जी
1: हाँ
0: जी
1: जी.
0: हाँ, तो उसको हम लोग एट्रिशन बोलते हैं सर।
1: अच्छा.
0: तो क्या है ना, आफ्टर सर्टेन एज सम पेशेंट्स जो कंप्लेन करते हैं, क्या है कि सेंसिटिविटी हो रही है दांतों में, कुछ खट्टा खाने को नहीं हो रहा, कुछ गर्म लेने को नहीं हो रहा, ज़्यादातर ठंडा लेने को नहीं हो रहा। तो ये सब अलामत हैं, तो आप डॉक्टर के पास विजिट करिए। ऐसा नहीं है कि किसी दांतों में इसी चीज़ का ट्रीटमेंट नहीं है। अगर आपको एट्रिशन है, दांत घिस रहे हैं, तो हम उसको स्टार्टिंग स्टेज में जेल वगैरह टूथपेस्ट दे सकते हैं। ज़्यादा घिस गए हैं तो उसको हम लोग कैप लगा सकते हैं।
1: अच्छा.
0: जैसे कि अब दांतों के बीच में गैप आ गया है, तो एक काइंड ऑफ सर्जरी रहती है कि फ्लैप सर्जरी, जो हम लोग दांतों को, हड्डी को घुलने से प्रिवेंट करें,
1: ओके.
0: तो और दांत का जो हड्डी है रिजॉर्ब ना हो, आपको रिजॉर्प्शन ना हो, तो बोन रिजॉर्प्शन ना हो, तो हम लोग एक काइंड ऑफ फ्लैप सर्जरी करते हैं, जहाँ पे आपकी हड्डी घुलने से मतलब प्रिवेंट करेगी, स्टॉप हो जाएगी वहीं पे। तो ये जो दांतों के बीच में सांद है, जो बढ़ना कम हो जाएगा, तो
1: अच्छा.
0: उससे जो वो ओल्ड एज पेशेंट्स हैं, उनको जो तकलीफ़ है कम हो जाएगी।
1: अक्सर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और जो हमारे फूड हैबिट्स हैं उसमें सामने के जो 4 दांत होते हैं उसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो अक्सर देखने में आता है कि जैसा जैसा उम्र बढ़ती है
0: जी
1: तो पहले मुतासिर यही 4 दांत होते हैं. तो इसका कुछ फूड हैबिट्स से डायरेक्ट ताल्लुक़ है?
0: हाँ सर, आप ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, कि ये आगे के दांत सिर्फ हमको खूबसूरत दिखने के लिए हैं सर, ये
1: अच्छा.
0: खाने के लिए नहीं है, चबाने के लिए नहीं है।
1: ओके.
0: मैं आपको सबको यही बताना चाहती हूँ, आप जो भी चीज़ खाएं, फ्रूट वगैरह, उसको प्लीज़ पीसेस करके खाइए, और आगे के दांतों पे फोर्स मत डालिए। जो भी खाना है आप पीछे के दांतों से चबाइए।
1: जी.
0: हम लोगों में आदत क्या है, कोई एप्पल ले लिए ऐसे
1: हाँ
0: ही चबाए, तो कोई भी जैसे कि हड्डी वगैरह है, कुछ
1: हाँ
0: भी है,
1: नॉन वेज खाते
0: नॉनवेज
1: वक्त भी
0: खाते वक्त भी
1: हम
0: थोड़ा,
1: सामने के 4 दांतों का ही इस्तेमाल
0: हाँ
1: ज़्यादा करते हैं.
0: हाँ तो वो मेरा सजेशन ये है कि आपके आगे के दांत ना यूज़ करें कोई भी घर चीज़ खाने के लिए। अल्लाह मियाँ पीछे के दांत दिया है, जो हम लोग दाढ़ बोलते हैं,
1: हाँ,
0: तो उसको
1: मोलार्स एंड
0: मोलार्स
1: प्रीमोलार.
0: बोलते हैं, तो उसको यूज़ करिए। पीछे के दांतों पे रख के आप चबाइए, और खाने का चीविंग एफिशिएंसी भी जो है ना सर, जल्दी जल्दी नहीं चबाना
1: अच्छा.
0: आपको। यू हैव टू मिनिमम एक बाइट को जो है ना सर, 24 टाइम्स आप अच्छे से चीव करिए,
1: अच्छा.
0: तो वो डाइजेशन भी अच्छा होगा, और दांतों की जो चीविंग एफिशिएंसी है वो भी बढ़ेगी एक तरह से। तो आगे के दांत को अगर आप खा रहे हैं कभी भूल के भी, तो आप फ्रूट को है, कोई भी चीज़ को है, थोड़ा छोटा छोटा पीसेस करिए और खाइए। ऐसे ही कोई भी हार्ड चीज़ अपने दांतों पे फोर्स मत डालिए। कंपैरेटिवली आगे के दांतों को कंपेयर, पीछे के दांतों से कंपेयर किए तो आगे के दांतों में हड्डी जो है ना, रूट्स जो है ना, सिंगल रहते हैं सर।
1: अच्छा,
0: तो पीछे के
1: सो स्ट्रेंथ
0: दाढ़ में
1: कम रहती है।
0: स्ट्रेंथ कम रहता है, पीछे के दांतों दाढ़ों में जो है आपको तीन तीन रूट्स, चार चार रूट्स रहते हैं।

0: और वो स्ट्रांग रहते हैं।
1: जी जी
0: तो इसीलिए बोलते हैं कि आगे के दांत एस्थेटिक खूबसूरत दिखने के लिए हैं।
1: ये बहुत ही कारामद और मुफीद बात बताई आपने कि बोझ या प्रेशर जो है पीछे
0: जी जी
1: डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए।
0: जी
1: अब एक हम बहुत ही अहम पहलू पर बात करेंगे डॉक्टर आलिया से, वो है कैविटी के, जो कॉमन एक प्रॉब्लम है
0: जी
1: मरीज़ों में देखने में आती है। कैविटी होने की वजूहात क्या होती हैं और इसको किस स्टेज पर आप फिलअप करने का डिसीजन लेते हैं?
0: हाँ सर, कैविटी जो है, हम लोग बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि कैविटी है क्या। तो आप बोल रहे हैं किस कारण से आएंगे, किस वजह से ये कैविटी हो सकता है। देखिए सर, इसमें अगेन आपको जेनेटिक भी है।
1: अच्छा,
0: जेनेटिक जैसे है कि आपके
1: पेरेंट्स
0: पेरेंट्स
1: को।
0: में है तो उसमें आना एक है लाजिम, मगर मेन थिंग है कि आपका ओरल हाइजीन,
1: ओके, किस हद तक आप
0: हाँ
1: साफ
0: मेन
1: सफाई
0: साफ
1: मेंटेन
0: सफाई कर रहे हैं।
1: करें।
0: और दूसरा क्या है कि कैविटी, हमारे दांत को हम लोग तीन हिस्से में ये करें, जैसे कि आपका फर्स्ट लेयर है एनामल, जैसे कि उसके नीचे रहता है जो हमारे दांत वाइट है वो एनामल है, और एनामल के नीचे रहता है डेंटिन जो येलोइश वाइट रहता है, और उसके नीचे रहता है नस, और हमारे दांत को जो पकड़ के रखता है वो हड्डी, मैंने आपको बताया,
1: हाँ
0: और ऊपर उसको कवर करके, जैसे हमारे कपड़े कवर हैं हमारे ऊपर, तो जो कवर करके पिंक कलर में रहता है वो आपका मसोड़ा। जैसे कि कैविटी आपके फर्स्ट लेयर में हो रही है यानी एनामल में, तो आपको वहाँ पे कोई भी ना सेंसिटिविटी होगी ना ही दर्द होगा,
1: तो महसूस नहीं होगा।
0: महसूस नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, अनटिल अनलेस आप आईने में देख लिए या डॉक्टर के पास गए, तभी आपको पता चलेगा कि वहाँ पे कैविटी है। तो इसीलिए 6 महीने में एक बार जाना ज़रूरी है। अगर उस स्टेज में आप कैविटी को सीमेंट भरा लिए तो वो जो कीड़ है यानी कैविटी है वहीं पे रुक जाएगी, हम लोग वो कैविटी को निकाल देके वहाँ पे सीमेंट डाल देंगे। अगर आपको वहाँ पे पता नहीं चला कि वहाँ पे कैविटी है और आप इग्नोर करें, तो ये जो कैविटी है वो आप प्रोग्रेस होके आपके सेकेंड लेयर यानी डेंटिन में जाएगी।
1: अच्छा।
0: डेंटिन में जाते ही वहाँ पे डेंटिनल ट्यूब्यूल्स रहते हैं सर, जिसकी वजह से आपको सेंसिटिविटी होती है, ठंडा खाने से या गर्म लेने से सनसनाहट होती है। यहाँ तक भी, ये स्टेज तक भी आप, अगर आपको फीलिंग ज़्यादा हो रहा सेंसिटिविटी का, सनसनाहट का, तो यहाँ तक भी हम लोग सीमेंट भर सकते हैं।
1: अच्छा,
0: अगर ये स्टेज भी क्रॉस कर गया सर, तो आपका आता है नेक्स्ट नस, ब्लड सप्लाई जहाँ पे रहता
1: जी
0: है,
1: जी
0: नर्व्स रहते हैं ये, अगर आपके ये नस को या उसको जो बोलते हैं पल्प,
1: हाँ, इफेक्ट कर गया अगर
0: हाँ
1: वो।
0: पल्प बोलते हैं सर, एनामल डेंटिन पल्प, पल्प को जाके टच हो गया डायरेक्टली, ये जो इन्फेक्शन है, कैविटी है, आपके पल्प से होके सीधा हड्डी में आ जाता है।
1: अच्छा, देन यू विल टेक ए डिसीजन अबाउट।
0: नो, अब
1: हाँ
0: क्या होता है बोले तो आपका जो है दर्द चालू होता है, और दर्द एक ही बार एकदम जोर से नहीं आता है सर, हल्के से आता है, फिर अपने आप रुक जाता है, फिर थोड़े दिन के बाद फिर दर्द होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अरे दर्द आ रहा, चलो मेडिकल शॉप चलें, एक दवाई ले लें,
1: हाँ,
0: खा
1: कोई
0: लिए
1: पेन किलर खा
0: पेन
1: लिए।
0: किलर खा लें। जिस दिन दर्द हद से बर्दाश्त से बहुत ज़्यादा हो जाता है, पेन ज़्यादा हो जाता है, देन हम लोग दांत के डॉक्टर के पास जाते हैं। तो कैविटी, जैसे कि आप फर्स्ट सेकेंड स्टेज में ही आप उसको कैविटी को सीमेंट भरा लिए, तो आप इसको लेके प्रिवेंशन है सर। अगर आपके नस को टच हो गया तो यहाँ पे भी हम लोग ऐसा नहीं कि दांत बचा नहीं सकते, आराम से हम लोग दांत को बचा सकते हैं। जैसे कि नया टेक्निक है आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट,
1: जी जी
0: रूट आपका आधा दांत भी कीड़ हो गया है तो ख़राब हो गया है, फिर भी हम लोग हमारे दांत को बचा सकते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट के प्रोसीजर जो
1: हाँ,
0: तरीका है
1: इस पर
0: उसके ऊपर।
1: हम एक मुकम्मल एक दूसरी हमारे इंटरव्यू में बात
0: जी
1: करेंगे
0: जी
1: रूट कैनाल
0: हाँ जी
1: ट्रीटमेंट
0: जी
1: पे।
0: जी
1: तो इस ताल्लुक़ से आप ये बताएं कि जो क्रिटिकल डिसीशन होता है दांत को रिमूव करने का,
0: जी
1: तो वो कैसे आप डिसाइड कर पाते हैं?
0: हाँ सर, दांत निकालने का जो है ना सर, आपको एकदम लास्ट स्टेज है वो, जैसे कि आपका दांत जो पूरा कंप्लीट से चारों तरफ से हिल रहा, तो
1: अच्छा।
0: हम लोग बोलते हैं कि मीजियली और बक्कली, तो टू एंड फ्रो मोशन में मीजियली एंड बक्कली और लेबियल एंड बक्कली, ये जो
1: तो
0: पूरे चारों
1: मूवमेंट।
0: पोर्शन में दांत हिल रहा और हड्डी पूरी घुल गई है आपकी, तो अभी जो है ना सर, बिना एक्सरे के ट्रीटमेंट नहीं होता है।
1: अच्छा।
0: हम लोग अगर पेशेंट आया तकलीफ दांत के दर्द से, आते ही दांत नहीं निकालना है।

0: जी
1: आप उसका एक्सरे लीजिए, हड्डी अगर पूरी घुल गई है तो वो दांत को निकालना मैंडेटरी होता है।
0: अच्छा
1: अगर रूट कैनाल मतलब सॉरी अगर कैविटी बहुत डीप होके पस पस ज़्यादा होके 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो गया हड्डी में पस, तभी भी आपको दांत निकालना मैंडेटरी हो जाता है, नहीं तो हम लोग दांत को बचा सकते हैं।
0: अच्छा, तो ये जो दांत निकालने का प्रोसीजर है, इसको आप एक नॉर्मल सर्जिकल

0: जाता है। कीड़ खा के वो दांत के छोटे छोटे पीसेस रह गए हैं, हड्डी में फ्यूज हो गए हैं, तो उसको ओपन एक्सट्रैक्शन बोलते हैं।
1: अच्छा।
0: अगर इसके पीछे आप सुने होंगे अखल दाड़ारा,
1: विजडम
0: वेरी गुड, हाँ सर, वो विजडम टूथ जो बोलते हैं, कि बोलते हैं चलो भाई अखल
1: का।
0: दाड़ारा, पेन ऑन एंड ऑफ रहता है। अगर वो सीधा है अखल दाड़, आपको दर्द नहीं हो रहा है, तो दांत मत निकलवाइए। अगर वो टेढ़ा है और
1: अच्छा
0: उसमें आपको तकलीफ हो रही है, देन इट्स कम टू एन सर्जिकल एक्सट्रैक्शन,
1: ओके।
0: और उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इम्पैक्शन सर।
1: अच्छा
0: और ज़्यादातर नौजवान बच्चों में और बच्चियों में आप देखे होंगे कि जब दांत इरेप्ट हो रहा, निकल रहा अखल दाड़, तो बहुत सारा दर्द होता
1: दर्द
0: है,
1: होता
0: और कभी कभी इन्फेक्शन होता है वहाँ
1: है।
0: पे। तो वहाँ पे उसको जो उनको प्रॉब्लम है वो क्या है, मसूड़े का इन्फेक्शन है
1: अच्छा।
0: का अखल दाड़ के ऊपर, और उसको हम लोग ओपरकुलेक्टमी के
1: ओके।
0: ज़रिए से हम लोग उसको दांत निकालेंगे, ज़रूरत नहीं रहती वहाँ पे। हम लोग वो प्रोसीजर करके हम लोग उसको इन्फेक्शन को कम कर सकते हैं। दांत तीन ही कंडीशन में निकालना है सर, एक पूरा हिल रहा, और जो पस बहुत ज़्यादा हो गया है और उसको हम लोग जब बचा नहीं सकते एक्सरे में देखने के बाद, और तीसरा आके जो इम्पैक्शंस हैं, जो आगे के दांत को प्रॉब्लम हो रहा उससे, और दर्द बहुत हद से ज़्यादा हो रहा, तो वो निकालना ज़रूरी है सर।
1: जी।
0: तो निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप उसको कैसे भी रहे, रूट केनाल है आजकल, अगर दांत निकाल भी दिए सर, तो आप उस जगह को इम्प्लांट करके नया ट्रीटमेंट, ये है जिसे हम लोग टाइटेनियम इम्प्लांट स्क्रू बिठाते हैं, वहाँ पे
1: अच्छा।
0: डाल के हम उसके ऊपर कैप लगा सकते हैं।
1: अभी आपने इम्प्लांट का जिक्र किया, तो मुख्तलिफ मेटालिक टीथ अवेलेबल हैं,
0: हाँ सर,
1: तो आप क्या प्रिफर करते हैं या क्या ज़्यादा सुझाव देते हैं, मशवरा देते हैं मरीज़ों को, कि दांत निकालने के बाद जो मसनवी दांत होता है, आर्टिफिशियल
0: जी
1: टीथ,
0: जी
1: हाँ, उसको दोबारा फिक्स करने के लिए कोई मखसूस मेटल का होना ज़रूरी है? हम देखते हैं कि जो अपर सेगमेंट के पेशेंट्स होते हैं वो गोल्डन टीथ के लिए ऑप्ट करते हैं,
0: जी
1: तो इससे इसके फ़ायदे और नुकसान कुछ आप बयान कीजिए।
0: हाँ सर, दांत निकलते ही लोग उसको मतलब इतना तवज्जो नहीं देते कि चलो भाई एक दांत निकल गया है क्या लगाएं, मगर इट्स मैंडेटरी है, बहुत ज़रूरी है, दांत निकालते ही आप वहाँ पे दांत रिप्लेस कर लें। दांत नहीं रिप्लेस करें तो क्या होता है सर, बगल के दो दांत है ना जो लूज़ होना शुरू हो
1: अच्छा
0: जाते हैं
1: अच्छा सपोर्ट ना होने की
0: ना
1: वजह
0: होने
1: से।
0: की वजह से, और एक दोनों दांत क्या है ना, अपने अपने तरफ नीचे की तरफ आ जाते हैं,
1: अच्छा।
0: और ऊपर का दांत जो है ना, नीचे के दांत नहीं होने की वजह से ऊपर के जो दांत है नीचे उतर जाएगा।
1: अच्छा।
0: तो इसका पूरा एक है कि दांत लूज़ हो जाएंगे एक एक एक एक करके,
1: तो ये भी एक टीम वर्क है दांतों
0: टीम
1: की
0: वर्क
1: एक।
0: है दांतों का।
1: हाँ
0: तो आप जितने से जितना हो कोशिश करें आप दांत रिप्लेस कर लें।
1: अच्छा,
0: अब हम लोगों को दांत रिप्लेस करने की बहुत सारी डिफरेंट तरीके हैं सर,
1: टेक्निक्स हैं।
0: टेक्निक्स हैं, जैसे कि निकालने डालने वाला बोलते हैं हम उसको, डेंचर बोलते हैं,
1: जी।
0: RPD,
1: हाँ।
0: रिमूवेबल पार्सल डेंचर, निकालने डालने वाला। नहीं आपको फिक्स्ड कराना है तो वहाँ पे ब्रिज भी आता है सर, जैसे कि आपका एक दांत निकल गया है, आप बगल के दो दांतों को सपोर्ट लेके आप ब्रिज बना सकते हैं।
1: अच्छा।
0: नहीं आपको और अच्छा एडवांस्ड टेक्निक चाहिए जो आप रिसेंटली चल रहा, तो वहाँ पे जहाँ पे दांत निकाले हैं हम लोग, वहाँ पे आप स्क्रू बिठा सकते हैं, यानी कि
1: अच्छा।
0: टाइटेनियम, जो मेटल हम लोग यूज़ करते हैं वो टाइटेनियम है, और उसको हम लोग इम्प्लांट बोलते हैं सर।
1: अच्छा
0: इम्प्लांट डाल देंगे, उसके ऊपर कैप आ जाएगा।
1: जी।
0: यहाँ पे क्या है, हम लोग बगल के दांतों को टच नहीं कर रहे हैं,
1: अच्छा,
0: तो और
1: जो
0: इसमें हम,
1: डायरेक्टली अफेक्टेड है उसी को आप।
0: जी हाँ, जहाँ पे दांत मिसिंग है वहाँ पे हम लोग इम्प्लांट डाल देंगे। आप चलेंगे, आप जैसे कि पूछे मेटल है मैडम, कौन से आपको कैप्स हैं, जैसे कि यहाँ पे बोलते हैं कोई क्रोन बोलता है डॉक्टर कोई, और कोई कैप बोलते हैं, तो इसमें डिफरेंट टाइप्स है सर, जैसे कि मेटल है, स्टेनलेस स्टील है, सिरेमिक है, आपको ऑल सिरेमिक है, जिरकोनिया है। जैसे कि मेटल बोले तो कंप्लीट मेटल रहता,
1: जी।
0: मेटल सेरामिक बोले तो अंदर आपको मेटल और ऊपर सेरामिक रहता है।
1: सिरेमिक।
0: ज़्यादातर मोहतरमा और मोहतरमा क्या है कि दांत के कलर का ही लगाइए,
1: अच्छा,
0: आगे वाले को पता नहीं
1: पता
0: चलना
1: नहीं
0: है,
1: चल।
0: तो दांत सेरामिक है सर।
1: हाँ।
0: और जिरकोनिया वन ऑफ द लेटेस्ट है जो अंदर मेटल नहीं रहता है आपको। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, जैसे कि कोई पेशेंट आपका ब्रेन का प्रॉब्लम है और उनको MRI कराना पड़ेगा, तो उनको हम लोग मेटल रेफर नहीं करेंगे कि आप
1: ओके।
0: मेटल कैप्स ना लगाएं, इम्प्लांट ना डलाएं, और दूसरी बात

0: क्या है कि आप मेटल को जो सेरामिक मेटल है वो मत डलाएं, जिरकोनिया डलाएं, ताकि आपको फ्यूचर में आप किसी स्कैनिंग के लिए, एमआरआई के लिए जा रहे हैं तो आपको जिरकोनिया में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा,
1: अच्छा, बिकॉज वो डिटेक्ट नहीं हो पाएगा.
0: डिटेक्ट नहीं हो पाएगा,
1: ओके अच्छा.
0: नहीं तो आपको कोई भी मेटल की चीज़ें निकाल के जाने पड़ेंगी। तो डेंटिस्ट्री एक ऐसा ये है सर जहाँ पे हमको पूरा ध्यान रखना पड़ता है
1: जी.
0: कि कौन से कैप्स हैं डिफरेंट काइंड्स
1: और
0: डिपेंडिंग
1: इसके
0: ऑन द
1: फ्यूचर में
0: हेल्थ
1: क्या?
0: कंडीशन। जी हाँ,
1: हाँ
0: फ्यूचर में इससे क्या हो सकता है, तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ आपके जो कैप्स हैं जो हम लोग पेशेंट्स को देते हैं।
1: अभी दौरान गुफ्तगू आपने कहा कि डेंचर्स के बनाने में और इसको ट्रीटमेंट में काफ़ी हम एहतियात बरतते हैं. तो अक्सर देखने में आता है कि कुछ जो लोग अनप्रोफेशनल अप्रोच भी इसमें प्रैक्टिस करते हैं और सर्टिफाइड नहीं होते हैं, लोग इसका शिकार हो जाते हैं. तो इस बारे में आप लोगों को क्या मशवरा देना
0: ये
1: चाहेंगे?
0: बहुत बहुत ज़रूरी है सर कि आजकल बहुत अनसर्टिफाइड जो टेक्नीशियंस हैं, या उनको क्या बोलें, क्वैक्स बोलते
1: हाँ
0: हैं, जो बहुत हो गए हैं और सही तरीके का उन इल्मियात नहीं है कि दांत के नीचे
1: मालूमात नहीं है.
0: मालूमात नहीं है कि दांत के पास कौन सा नस जा रहा, कौन सा क्या ब्लड सप्लाई हो रहा, दांत निकालने के लिए कौन सा एनेस्थीसिया देना है वहाँ पे। तो आप सही डेंटिस्ट के पास जाएं जो सर्टिफाइड हैं, और सही तरीक़ा अपनाएं ताकि आपको फ्यूचर में आगे जाके आपको प्रॉब्लम ना हो। अब मैंने ज़्यादातर मैंने भी सुना है कि दांत निकालते ही तुरंत डांट लगाते देते हैं, वो बहुत गलत बात है सर।
1: हाँ, उसका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है
0: हाँ,
1: उसके
0: दांत
1: कई.
0: निकालने के
1: हाँ
0: बाद उसको हीलिंग होना है,
1: जी
0: हीलिंग
1: जी
0: होने के बाद आप प्रोस्थेसिस लगा सकते हैं। तो ऐसे क्वैक्स के पास जाके आप फ्यूचर में प्रॉब्लम ना फेस करें, तो बेटर है कि आप सर्टिफाइड डेंटिस्ट या नज़दीकी कोई भी आपका डेंटिस्ट जो है, आप उनके पास जाके ट्रीटमेंट कराएं, और
1: जी
0: सही ट्रीटमेंट कराएं।
1: अब हमारी गुफ्तगू के आखिरी मरहले में ये बताएं कि अगर सेहतमंद दांत भी हों या फिर कोई दांत का मरीज़ भी हो, तो क्या ज़्यादा ठंडा पानी या ठंडी ग़िज़ा या गर्म पानी या गर्म ग़िज़ा इस्तेमाल करना नुकसानदेह साबित होता है अगर सेहतमंद दांत भी हों तो?
0: हाँ सर, ये मेरे अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आप बोले कि सेहतमंद दांत रहने के बावजूद
1: हाँ
0: आप ज़्यादा गर्म और ज़्यादा ठंडा, सर कोई भी दांत आपके ख़राब हों या अच्छे हों, ये एक सर्टेन लिमिट रहता है सर
1: अच्छा,
0: दांतों का भी, जो
1: सेंसिटिविटी लेवल.
0: सेंसिटिविटी लेवल रहता है, और एक सीमित रहता है कि आप उससे ज़्यादा ठंडा लेंगे तो अच्छे दांत भी आपको सेंसिटिव फील हो जाएंगे।
1: अच्छा.
0: तो आप ज़्यादा ठंडा भी ना लें और ज़्यादा गर्म भी ना लें, ताकि और तुरंत एक और एक सलाह है कि गरम लेते ही तुरंत ठंडा ना लें, और ठंडा लेते ही तुरंत आप गरम ना लें,
1: वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा बहुत
0: कॉन्ट्राडिक्टरी
1: ही.
0: हो जाएगा, और इसमें आपको दांतों में जैसे कि हम लोग बोलते हैं सर इरोजन हो जाएगा,
1: अच्छा,
0: यहाँ पे
1: यानी अच्छे खासे दांत भी खराबी की तरफ
0: इरोड हो
1: बढ़ेंगे.
0: जाएंगे।
1: जी
0: तो ज़्यादा गर्म भी ना लें और ज़्यादा ठंडा भी ना लें, और जिसकी डिसीज्ड कंडीशन है दांतों की वो थोड़ा ध्यान रखें ज़्यादा गर्म लेने से।
1: अच्छा, तो ग़िज़ा का बहुत बड़ा दखल है जहाँ तक दांतों की देखभाल का ताल्लुक़ है
0: जी जी
1: और
0: जी
1: ट्रीटमेंट का ताल्लुक़ है.
0: जी
1: डॉक्टर आलिया शरीफ, आपसे बेहद मुफीद मालूमात आपने सामईन को पहुँचाई. सामईन, डॉक्टर आलिया शरीफ के बातों पर अमल करते हुए हमें उम्मीद है कि आप दांतों को सेहतमंद रख पाएंगे. और ख़ास तौर पर आपने कहा कि एक सर्टिफाइड डेंटिस्ट के पास जाकर ही अपना इलाज करवाएं. ये जो भी मिल जाते हैं आपको, अगर मशवरों पर अमल मत कीजिए, एक रिकॉग्नाइज्ड और सर्टिफाइड डॉक्टर के पास जाकर ही इलाज करवाइए.
0: जी
1: बहुत शुक्रिया डॉक्टर आलिया शरीफ.
0: शुक्रिया सर।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर माइक पर सिस रहे थे, डेंटल केयर इश्यूज, केयर एंड प्रिकॉशंस पर की गई बातचीत डॉक्टर आलिया शरीफ से। सामने अब आइए सुनते हैं गीत सुरीले गाते जा में कुछ सुरीले गीत।

दोस्तों, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जिसका ताल्लुक़ हमारे आज और आने वाले कल से है। हर साल 5 जून को पूरी दुनिया में आलमी योम माहौलियात वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद किसी जश्न का इनेकाद नहीं, बल्कि हम सबको ये याद दिलाना है कि ये खूबसूरत ज़मीन धरती हमारा वाहिद घर है और इसकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। आज हमारी ज़मीन शदीद ख़तरात से दो चार है। बढ़ती हुई आलूदगी, जंगलात का खात्मा और प्लास्टिक का बेतहाशा इस्तेमाल हमारे माहौल को तेज़ी से तबाह कर रहा है। हम अक्सर सोचते हैं कि एक हमारे अकेले बदलने से क्या होगा, लेकिन याद रखें, खतरा खतरा ही से दरिया बनता है। आइए दोस्तों, इस पर सुनते हैं कि जिसको लिया है हमने फिल्म रेफ्यूजी से। इस फिल्म के गीत को गाया है सोनू निगम और अलका याग्निक जी ने। गीतकार है जावेद अख्तर और संगीत से इसे सजाया है अनु मलिक ने।

0: ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब के लिए ये धरती बनाई थी, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बना दी। मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस बार नहीं आने देंगे, मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है तुम्हें छू कर आई होगी। मैं इसे सांस बनाकर अपने सीने में भर लूंगा।
1: ये नदियां जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होंठों को भिगो लूंगी। समझूंगी तुम्हारे होंठों को छू लिया।

दोस्तों, अगर हम माहौल को आलूदगी यानी पोल्यूशन से बचाने की तरफ नज़र डालते हैं तो हमें तीन आसान काम करने होंगे, जैसे शजरकारी, अपने हिस्से का कम से कम एक पौधा ज़रूर लगाएं और इसकी देखभाल भी करें। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें, एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक यानी सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करें। वसाइल की बचत करें यानी पानी और बिजली को बिला वजह ज़ाय करने से गुरेज करें। अब आइए दोस्तों सुनते हैं एक और गीत जिसको लिया है हमने फिल्म कुर्बान से। इस फिल्म के गीत को गाया है अनुराधा पौडवाल जी और उदित नारायण ने। गीतकार है समीर और संगीत से इसे सजाया है आनंद मिलन ने। आइए सुनें।

दोस्तों, हम बात कर रहे थे माहौल के मुताबिक। वैसे हमें चाहिए कि हम माहौल दोस्त बने, यानी एनवायरनमेंट फ्रेंडली बने, शजरकारी को फ़रोग दें और वसाइल की बचत पर काम करें, जिससे ना सिर्फ माहौल की आलूदगी में कमी आएगी बल्कि इसमें माहौल में एक नई तरोताज़गी, एक नया पन ज़रूर आप देखेंगे। इसीलिए अपनी ज़मीन को हरा भरा और पाकीज़ा बनाना किसी एक का काम नहीं बल्कि हम सब का फ़र्ज़ है। हमें आने वाली नस्लों को एक बेहतर और सांस लेने के काबिल माहौल देना चाहिए। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले गीत की तरफ, जिसको लिया है हमने फिल्म कहो ना प्यार है से। इस फिल्म के गीत को गाया है लकी अली ने।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे फिल्म कहो ना प्यारे से लिया गया ये गीत। वैसे दोस्तों माहौल की अगर हम बात करें तो हमें पता चलता है कि जब हम कुदरत का नज़ारा करते हैं तो इसकी खूबसूरती और खूबसूरत वादियों, दरियाओं का बहता पानी और हसीन मंज़र देखकर दम बखुद रह जाते हैं, यानी सरप्राइज़ हो जाते हैं। इतनी खूबसूरत वादियाँ ना सिर्फ इंसान को अपने अंदर समो लेती है बल्कि ये दुनिया के अफकार को भूल जाता है और दिल चाहता है कि ये मंज़र हमेशा ये महसूस करे। आइए सुनते हैं गीत जिसको लिया है हमने फिल्म दिल चाहता है से। इस फिल्म के गीत को गाया है शंकर महादेवन ने। आइए सुने।

वैसे दोस्तों, अगर हम देखें ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हात में, अक्सर व बेशतर जो लोग सफ़र करते हैं या ट्रैवल करते हैं वो देखी गई है। लोग अपनी कहानी या अपनी यादों को जब साझा करते हैं तो ये खूबसूरत मकामात का ज़रूर ज़िक्र करते हैं, और इस सफ़र के दौरान पेश आए कुछ हंसी खुशी की बातें ज़रूर बताते हैं। आइए सुनते हैं एक और गीत जिसको लिया है हमने फिल्म मस्त से। इस फिल्म के गीत को गाया है सोनू निगम और सुनिधि चौहान ने।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म मस्त से लिया गया ये गीत। वैसे दोस्तों, ज़िंदगी में खुशी काफ़ी मायने रखती है। खुशी का लम्हा ना सिर्फ इंसान को फ़र्द बख्शता है, बल्कि ये ज़िंदगी को दोबारा और ज़िंदगी में एक उम्मीद बिखेर देता है। आइए अब सुनते हैं गीत सुरीले गाथा में आखिरी गीत, जिसको लिया है हमने फिल्म रंगीला से। इस फिल्म के गीत को गाया था आशा भोसले जी ने। आइए सुने।

0: चार दिन का ही साथ था, लेकिन जिंदगी ए कुमार ले डूबी। हर रिश्ता वक्त की लामाई से नहीं बल्कि गहराई से पहचाना जाता है, इसीलिए हर ताल्लुक को संजीदगी और एहतियात से निभाएं। किसी एक रिश्ते या शख्स को अपनी पूरी जिंदगी का मरकज बना लेना खतरनाक हो सकता है। तवाजुन ही ज़हनी सुकून देता है। मोहब्बत या ताल्लुक अपनी पहचान, खुदी और मकसद को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है, वरना इंसान अंदर से टूट जाता है। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, वक्ती दुख को मुस्तकिल मायूसी में बदलने ना दें। हर हाल में अल्लाह की तरफ रुजू दिल को मजबूत करता है और इंसान को टूटने से बचाता है। किसी भी ताल्लुक में हद से ज्यादा डूब जाना इंसान को कमजोर कर देता है, इसीलिए मोहब्बत करें मगर खुद को संभाल कर।
1: पयाम शब के साथ दोस्तों आज का नहरिंग प्रोग्राम अब अपने अख्तिताम को पहुंचता है। इस उम्मीद के साथ कल शब 9:30 पर हम दोबारा हाजिर होंगे एक नई बस में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। ये आकाशवाणी हैदराबाद है, FM रेनबो 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही देर में हिंदी और अंग्रेज़ी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमन में 2,970 करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज सूरत में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
3: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी

0: साइकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने हमेशा अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृहमंत्री ने त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैसों का भंडार मिला है। खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी। साथ ही यहां सूरत मेट्रो का भी विस्तार हो रहा है। ये सारे कदम हरित शहर के रूप में सूरत की पहचान को और सशक्त करेंगे।
1: After reaching Surat this afternoon, the Prime Minister first visited Hazira and reviewed the ongoing industrial and infrastructure operations.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत मेरे मनमीत में आप सभी का स्वागत करती है अर्पना। प्यार भरा नमस्कार मेरा स्वीकार करें। वक्त हो गया है 11:46 और 6 सेकंड। तो चलिए गीत मेरे मनमीत की शुरुआत करते हैं किशोर कुमार की आवाज के साथ। गीत जो है उसे संगीतबद्ध किया है राजेश रोशन ने। फिल्म का नाम है याराना। एक बार फिर से आपको बता दूं, आपने ट्यून इन किया हुआ है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और आप सुन रहे हैं गीत मेरे।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

11:51 और 2 सेकंड हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत मेरे मनमीत। और अब आप सुनेंगे शैलेंद्र की आवाज में आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। फिल्म का नाम है बॉबी।

बॉबी फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अगला गीत आप जो सुनेंगे वो होगा आरती मुखर्जी की आवाज़ में और गुलजार का लिखा ये गीत है, आर डी बर्मन का संगीत है और फिल्म का नाम है मासूम। इस गीत के बाद एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे समाचार। अर्पना को दें इजाज़त, नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर्ज की है। दमन में 2,970 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि देश बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास और गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए सुधारों की अपनी गति को बनाए रखेगा। श्री मोदी ने कहा कि नई परियोजनाएं युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश के लिए शुरू की गई विभिन्न समुद्री परियोजनाओं से एक मजबूत ब्लू इकोनॉमी समुद्री अर्थव्यवस्था के लिए भारत का विजन और मजबूत होगा। उन्होंने दमन हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल का उद्घाटन भी किया और नमो अस्पताल को देश को समर्पित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सूरत में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया

0: भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है, इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। उन्होंने कहा कि हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने हमेशा अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री ने कल त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 330 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। श्री पुरी ने कहा कि प्राकृतिक गैस का भंडार 355 मीटर की गहराई पर पाया गया है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिवसीय भारत दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुगियोनो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि जून तक देश भर में 9,42,000 से ज्यादा किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं, जिससे संतुलित खाद के इस्तेमाल का यह अभियान एक देशव्यापी जन आंदोलन बन गया है। कृषि मंत्रालय ने जानकारी दी कि इस अभियान के तहत अब तक 17,800 से ज्यादा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें 1,57,000 से ज्यादा लोगों को संतुलित खाद के इस्तेमाल, मिट्टी की सेहत के प्रबंधन और खेती के वैज्ञानिक तकनीकों के बारे में जानकारी दी गई है। इन प्रदर्शनों का उद्देश्य लंबे समय में मिट्टी की उत्पादकता को बेहतर बनाना और रासायनिक खादों पर निर्भरता को कम करना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय निपुणिका शाहिद। Prime Minister Narendra Modi has emphasized self-reliance in the energy sector, stating that the world is moving towards a green future and India is actively leading the way by balancing economic growth with ecological preservation. Addressing a large gathering after launching various infrastructure projects worth over 18,000 crore rupees in Surat yesterday, the Prime Minister pointed out that out of India's total renewable energy capacity of 250 gigawatts, Gujarat alone contributes 50 gigawatts. Watts, accounting for a crucial 1/5 of the nation's green energy share. Speaking on the transformation of Surat, the Prime Minister praised the city's spirit and its transition into a green city.
1: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी, साथ ही यहां सूरत मेट्रो का भी विस्तार हो रहा है। ये सारे कदम हरित शहर के रूप में सूरत की पहचान को और सशक्त करेंगे।
2: after reaching

वक्त हुआ है 12:10, वक्त हुआ है 12:11 और ठीक 4 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा, मैं हूं राखी आपके साथ।

हम दोनों फिल्म का गाना आपने सुना आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में। मोहब्बत की दास्तान कोई किताब का किस्सा नहीं होती, ये तो दिल की उन धड़कनों में लिखी जाती है जिन्हें शब्दों में बांधना आसान नहीं होता। कभी एक मुस्कान से शुरुआत होती है, कभी एक नजर से, और फिर धीरे धीरे कोई अनजाना शख्स जिंदगी का सबसे अपना बन जाता है। इस दास्तान में खुशी के रंग भी होते हैं, इंतजार की रातें भी, मिलने की खुशबू भी और बिछड़ने का दर्द भी। कभी दिल उम्मीदों के लिए जलता है तो कभी यादों की चादर ओढ़कर चुपचाप बैठ जाता है। मगर सच्ची मोहब्बत की खूबी यही है कि वो हर हाल में दिल को रोशन रखती है।

ना खुदा फिल्म का गाना आपने सुना, नितिन मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में। निदा फाजली ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने। तुम्हारी पलकों की चिलमन में क्या छुपा है, सितारों जैसा कोई राज है क्या? जब भी नजरें उठती हैं तो लगता है जैसे रात का आसमान झिलमिला उठा हो, उन झुकी हुई पलकों के पीछे शायद

कोई अनकहा ख्वाब बसा है, या फिर किसी के लिए संजोया हुआ एक मासूम सा एहसास। जो भी है, इतना जरूर है कि उसकी चमक सितारों से कम नहीं।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं ये चांद है या तुम्हारा कंगन सितारे हैं या तुम्हारा आंचल हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो कहीं नहीं हो मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो यहीं कहीं

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: सिलसिला फिल्म का गाना आपने सुना, अमिताभ बच्चन और लता मंगेशकर की आवाज में। जावेद अख्तर ने इसे लिखा और संगीत दिया शिव हरी ने।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

वक्त हुआ है 12:33 और ठीक 12 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं निशिगंधा। मैं हूं राखी आपके साथ। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

मेरे ख्यालों की रह गुजर से देखिए वो गुजर रहे हैं, जैसे किसी खामोश शाम में यादों के काफिले उतर रहे हों। ना कोई आहट ना कोई शोर, फिर भी दिल की हर धड़कन उनकी मौजूदगी का एहसास कर रही है। वो सामने नहीं मगर ख्वाबों और तसव्वुर की दुनिया में आज भी उतने ही करीब हैं। आपने सुना फिल्म ये इश्क नहीं आसान, फिल्म का गाना अनवर की आवाज में, आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

हीरो फिल्म का गाना आपने सुना अनुराधा पौडवाल और मनहर की आवाज में। इसे लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। प्रेम ग्रंथ के पन्नों पर अपनी तकदीर तो जीरो है, मोहब्बत के हर सबक को पढ़ा मगर हासिल कुछ अधूरा है। जिन्हें दिल की किताब का सबसे खूबसूरत अध्याय समझा, वक्त ने बताया कि वो बस एक खूबसूरत फसाना था। फिर भी इस दिल को शिकायत नहीं, क्योंकि प्यार का एहसास ही उसकी सबसे बड़ी दौलत है।

सागर फिल्म का गाना आपने सुना, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। जावेद अख्तर ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने। लहरों का शोर, ठंडी हवाएं और दूर तक फैला हुआ नीला पानी भी तुम्हारी कमी को भर नहीं पाता। ऐसा लगता है जैसे इस विशाल दुनिया में तुम्हारे सिवा मेरा कोई अपना नहीं। हर आती जाती लहर तुम्हारी याद लेकर आती है और हर ढलती शाम तुम्हारे इंतजार को और गहरा कर जाती है। तुम्हारे साथ होने का एहसास ही मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है और तुम्हारे बिना हर खुशी अधूरी सी लगती है।

लावा फिल्म का गाना आपने सुना आशा भोसले की आवाज में और किशोर कुमार की आवाज में आपने गीत सुना। वक्त हुआ है 12:56 और ठीक 47 सेकंड। अब से बस कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार। समाचारों के बाद गीत सुहाने आप सुनेंगे मेरे साथ। और फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर्ज की है। दमन में 2,970 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि देश बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास और गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए सुधारों की अपनी गति को बनाए रखेगा। श्री मोदी ने कहा कि नई परियोजनाएं युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश के लिए शुरू की गई विभिन्न समुद्री परियोजनाओं से एक मजबूत ब्लू इकोनॉमी के लिए भारत का विजन और मजबूत होगा। उन्होंने दमन हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल का उद्घाटन भी किया और नमो अस्पताल को देश को समर्पित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सूरत में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी, सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। उन्होंने कहा कि हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5

0: प्रमुख देशों में से एक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने हमेशा अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री ने कल त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगा। भारत के मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर सेक्टर को मजबूत करने और सी फूड के निर्यात को बढ़ाने पर केंद्रित 2 दिवसीय सी फूड निर्यात राष्ट्रीय कार्यशाला कल विशाखापत्तनम में हुई। ये कार्यशाला मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्य पालन विभाग द्वारा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सहयोग और आंध्र प्रदेश सरकार के समर्थन से आयोजित की जा रही है। कार्यशाला का उद्घाटन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने केंद्रीय मंत्रियों पीयूष गोयल, राजीव रंजन सिंह, चिराग पासवान और के राम मोहन नायडू के साथ किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि जून तक देश भर में 9,42,000 से ज्यादा किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं, जिससे संतुलित खाद के इस्तेमाल का यह अभियान एक देशव्यापी जन आंदोलन बन गया है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिवसीय भारत दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुगियोनो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से पराजित हो गई थी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi has emphasized self-reliance in the energy sector, stating that the world is moving towards a green future and India is actively leading the way by balancing economic growth with ecological preservation. Addressing a large gathering after launching various infrastructure projects worth over 18,000 crore rupees in Surat yesterday, the Prime Minister pointed out that out of India's total renewable energy capacity of 250 gigawatts, Gujarat alone contributes 50 gigawatts, accounting for a crucial 1/5 of the nation's green energy share. Speaking on the transformation of Surat, the Prime Minister praised the city's spirit and its transition into a green city.
2: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी। साथ ही यहां सूरत मेट्रो का भी विस्तार हो रहा है। ये सारे कदम हरित शहर के रूप में सूरत की पहचान को और सशक्त करेंगे।
1: After reaching Surat, the Prime Minister first visited Hazira and reviewed the ongoing industrial and infrastructure operations. Prime Minister Narendra Modi has asserted that the foundation of the Indian economy remains exceptionally strong, with the nation recording a 7.7% growth in the fiscal year 2025-26, despite a global economic crisis. Addressing a large gathering after launching a series of developmental projects worth over 2,970 crore rupees in Daman, the Prime Minister noted that India continues to be among the fastest growing economies in the world. He assured the citizens that the country will forge ahead with its reform express while prioritizing massive infrastructure development and welfare schemes for the poor. Prime Minister Narendra Modi has congratulated people of Uttar Pradesh for planting over 5

वक्त हुआ है 1:10 और ठीक 59 सेकेंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। गीत सुहाने, मैं हूं राखी आपके साथ।

ससुराल फिल्म का गाना आपने सुना, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। सुहाने पुराने गाने सिर्फ सुरों और शब्दों का मेल नहीं होते, बल्कि यादों का एक खूबसूरत कारवां होते हैं। इनमें बीते हुए लम्हों की खुशबू, मोहब्बत की मासूमियत और जिंदगी की सादगी बसी होती है। जब भी कोई पुराना गाना कानों में पड़ता है, दिल अनायास ही उन दिनों की ओर लौट जाता है जहां छोटी छोटी खुशियों में भी एक अलग ही सुकून था। इन गीतों की मधुर धुनें समय के साथ पुरानी नहीं होती, बल्कि हर बार सुनने पर नए एहसास जगा देती हैं।

अनुपमा फिल्म का गाना आपने सुना आशा भोसले की आवाज में। कैफी आजमी ने इसे लिखा और संगीत दिया हेमंत कुमार ने। सुहाने पुराने गाने समय की धूल से कभी धुंधले नहीं पड़ते। उनकी धुनों में एक ऐसा जादू होता है जो बरसों बाद भी दिल को उसी तरह छू जाता है जैसे पहली बार जब उसे सुना था। कभी वो किसी भूली बिसरी मोहब्बत की याद दिलाते हैं तो कभी जीवन के उन सुनहरे पलों को जिन्हें हम पीछे छोड़ आए हैं।

आखिरी खत फिल्म का गाना आपने सुना भूपिंदर की आवाज में, कैफी आजमी ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने। छेड़ो कोई दास्तान, कोई ऐसा फसाना सुनाओ जो दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक दे, कोई ऐसी कहानी जिसमें मोहब्बत की खुशबू हो, इंतजार की कसक हो और मिलन की मीठी सी मुस्कान भी, ऐसी दास्तान जो बीते हुए लम्हों को फिर से जिंदा कर दे और यादों के चिराग एक एक करके रोशन कर दे।

हावड़ा ब्रिज फिल्म का गाना आपने सुना, आशा भोसले और रफी की आवाज में। कमर जलालाबादी ने इसे लिखा और संगीत दिया ओपी नैयर ने। एक पल की उस मासूम सी निगाह ने दिल पर ऐसा असर किया कि फिर खुद पर हमारा कोई इख्तियार ना रहा, न कोई वादा हुआ न कोई इजहार, मगर तेरी आंखों ने जो बात कही उसे दिल ने उम्र भर के लिए अपना लिया। उस एक नजर में जाने कैसा जादू था कि दुनिया की सारी रौनकें फीकी लगने लगी। हर तरफ बस तेरा ही ख्याल, तेरी ही तस्वीर और तेरी ही यादों का सिलसिला नजर आने लगा। दिल ने लाख कोशिश की संभलने की, मगर तेरी निगाहों के तीर इतने गहरे उतर चुके थे कि बच निकलने की कोई राह न बची।

मॉडर्न गर्ल फिल्म का गाना आपने सुना, मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाज में। गुलशन बाबरा ने इसे लिखा और संगीत दिया रवि ने।

वक्त हुआ है 1:36 और ठीक 30 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

चंगेज खान फिल्म का गाना आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में। कमर जलालाबादी ने इसे लिखा और संगीत दिया हंसराज बहल ने।

बाबरी नैन फिल्म का गाना आपने सुना राजकुमारी की आवाज में। केदार शर्मा ने इसे लिखा और संगीत दिया रोशन ने। जब शाम ढलती है और हल्की हल्की हवा चलती है, तब कोई पुराना गीत सुनना ऐसा लगता है जैसे यादों की किताब का कोई प्रिय पन्ना फिर से खुल गया हो। उन मधुर स्वरों में बीते दिनों की हंसी, कुछ अधूरे ख्वाब और कुछ अनकहे अफसाने धीरे धीरे दिल में उतरने लगते हैं।

मॉडर्न गर्ल फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा और संगीत दिया रवि ने। ये पुराने गाने हर दौर में हर पीढ़ी के दिल में अपनी जगह बना लेते हैं। समय बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं, मगर इन गीतों की

ठोकर फिल्म का गाना आपने सुना तलत की आवाज़ में। मजाज लखनवी ने इसे लिखा और संगीत दिया सरदार मलिक ने। ए गमे दिल अगर तो ना होता तो शायद मोहब्बत की गहराई का एहसास भी ना होता। दर्द ही तो है जो खुशी की कीमत समझता है और जुदाई ही तो है जो मिलन की अहमियत बढ़ाती है। इसलिए अब तुझसे लड़ना नहीं तुझे समझना सीख लिया है, क्योंकि जिंदगी की हर खूबसूरत दास्तान में थोड़ा सा गम भी शामिल होता है।

शाया फिल्म का गाना आपने सुना, तलत और लता की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा और संगीत दिया सलिल चौधरी ने। वक्त हुआ है 1:55, वक्त हुआ है 1:56 और ठीक 3 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 2 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर्ज की है। दमन में 2,970 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि देश बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास और गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए सुधारों की अपनी गति को बनाए रखेगा। श्री मोदी ने कहा कि नई परियोजनाएं युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश के लिए शुरू की गई विभिन्न समुद्री परियोजनाओं से एक मजबूत ब्लू इकोनॉमी के लिए भारत का विजन और मजबूत होगा। उन्होंने दमन हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल का उद्घाटन भी किया और नमो अस्पताल को देश को समर्पित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सूरत में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने सूरत में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता के लिए गुजरात की है। उन्होंने कहा कि हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने हमेशा अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री

0: ने कल त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल हाइड्रोजन रेल परियोजना की प्रगति की समीक्षा की और दिल्ली के शकूर बस्ती डिपो में आधुनिक मेंटेनेंस सुविधाओं का निरीक्षण किया। उत्तर रेलवे के तिलक ब्रिज शकूर बस्ती रेल सेक्शन के निरीक्षण के दौरान मंत्री ने वरिष्ठ रेल अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और इलाके में चल रहे विभिन्न विकास परियोजनाओं की स्थिति का जायजा लिया। शकूर बस्ती डिपो में श्री वैष्णव ने अत्याधुनिक रिट्रैक्टेबल ओवरहेड इक्विपमेंट सिस्टम, बोगी पिट और बोगी लिफ्टिंग सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को ऑपरेशनल क्षमता को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिवसीय भारत दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुगियोनो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि जून तक देशभर में 9,42,000 से ज्यादा किसान बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं, जिससे संतुलित खाद के इस्तेमाल का यह अभियान देशव्यापी जन आंदोलन बन गया है। भारत एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से पराजित हो गई थी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi has emphasized self-reliance in the energy sector, stating that the world is moving towards a green future and India is actively leading the way by balancing economic growth with ecological preservation. Addressing a large gathering after launching various infrastructure projects worth over 18,000 crore rupees in Surat yesterday, the Prime Minister pointed out that out of India's total renewable energy capacity of 250 gigawatts, Gujarat alone contributes 50 gigawatts, accounting for a crucial one-fifth of the nation's green energy share. Speaking on the transformation of Surat, the Prime Minister praised the city's spirit and its transition into a green city.
2: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी, साथ ही यहां सूरत मेट्रो का भी विस्तार हो रहा है। ये सारे कदम हरित शहर के रूप में सूरत की पहचान को और सशक्त करेंगे।
1: After reaching Surat, the Prime Minister first visited Hazira and reviewed the ongoing industrial and infrastructure operations. Prime Minister Narendra Modi has asserted that the foundation of the Indian economy remains exceptionally strong, with the nation recording a 7.7% growth in the fiscal year 2025-26 despite a global economic crisis. Addressing a large gathering after launching a series of developmental projects worth over 2,970 crore rupees in Daman, the Prime Minister noted that India continues to be among the fastest growing economies in the world. He assured the citizens that the country will forge ahead with its reform express while prioritizing massive infrastructure development and welfare schemes for the poor. Prime Minister Narendra Modi has congratulated people of Uttar Pradesh for planting over 5 crore saplings on World Environment Day. Sharing a social media post of Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, Mr. Modi said, "On this amazing success associated with their Ek Ped Ma Ke Naam campaign shows that today people are completely committed to environmental protection." He expressed confidence that such initiatives will be very helpful in realizing the green future.

वक्त हुआ है 2:10 और ठीक 59 सेकेंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई, मैं हूं राखी आपके साथ।

लहू के दो रंग फिल्म से आपने गाना सुना, किशोर कुमार की आवाज में। फारूख कैसर ने इसे लिखा और संगीत दिया बप्पी लाहिड़ी ने। गीतों से भरी ये रात सुरमई है, हवा में जैसे किसी पुराने प्यार की खुशबू घुली हुई है। चांद की चांदनी खामोशी के पन्नों पर उतर आई है और मन के किसी कोने में भोली बिसरी यादों की महफिल सज गई है। ऐसे में हर धुन दिल को छू जाती है, हर गीत कोई अनकही कहानी कह जाता है।

अब्दुल्ला फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में, इसे लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। मैंने पूछा चांद से, देखा है कहीं मेरे यार साहसीन? चांद मुस्कुरा कर बोला, मेरी चांदनी में चमक तो बहुत है पर तेरे यार जैसी कशिश नहीं। सितारे लाखों

कभी कभी फिल्म से आपने गाना सुना मुकेश की आवाज में, साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है जैसे तुम्हें मेरी जिंदगी की हर अधूरी दुआ का जवाब बनाकर रचा गया हो, जैसे तुम्हारी मुस्कान

मेरी सुबहों की रोशनी हो और तुम्हारा साथ मेरी शामों का सुकून। तुम्हें देखकर यूं लगता है कि किस्मत ने बड़ी फुर्सत से तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ लिखा होगा, वरना किसी अजनबी का यूं दिल की धड़कनों में बस जाना इतना आसान कहाँ होता है।

कुर्बानी फिल्म का गाना आपने सुना आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में। इंदीवर ने इसे लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने।

वक्त हुआ है 2:36 और ठीक 8 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई, मैं हूं राखी आपके साथ। जी हां, रात सुरमई है, चांदनी नरम नरम सी बिखरी हुई है, हवाओं में खामोश एक सुंदर सा संगीत खुला हुआ है और सितारे आसमान पर जैसे कोई प्रेम गीत लिख रहे हों। ऐसे सुहाने पल में दिल बस यही चाहता है कि कोई अपना पास बैठे, कुछ न कहे और फिर भी हर बात समझ में आ जाए।

जाबाज फिल्म का गाना आपने सुना, किशोर कुमार और सपना की आवाज में। इंदीवर ने इसे लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने। कितना प्यारा है ये साथ, जैसे ठहरी हुई शाम को कोई मधुर सहारा मिल गया हो। तेरी बातों में वो सुकून है जो बिखरे हुए ख्यालों को भी सजा देता है। तेरे साथ चलते हुए यूं लगता है मानो हर रास्ता मंजिल बन गया हो और हर लम्हा एक खूबसूरत याद। दुनिया की भीड़ में भी दिल यही कहता है, तेरा साथ है तो जिंदगी कितनी हसीन है।

धर्मात्मा फिल्म का गाना आपने सुना मुकेश और कंचन की आवाज में। इंदीवर ने इसे लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने। तारीफ किसे अच्छी नहीं लगती जनाब, ये तो वो आईना है जिसमें हर कोई खुद को मुस्कुराते हुए देखना चाहता है। बस शर्त इतनी है कि अल्फाज में सच्चाई हो, वरना बढ़ा चढ़ाकर कही गई बातें दिल तक नहीं पहुंचती।

यादों की बारात फिल्म का गाना आपने सुना आशा और रफी की आवाज में। मजरूह ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। वक्त हुआ है 2:52 और ठीक 30 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 3:10 पर हमराही भारती शर्मा के साथ। तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर दर्ज की है। दमन में 2,970 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि देश बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास और गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए सुधारों की अपनी गति को बनाए रखेगा। श्री मोदी ने कहा कि नई परियोजनाएं युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश के लिए शुरू की गई विभिन्न समुद्री परियोजनाओं से एक मजबूत ब्लू इकोनॉमी के लिए भारत का विजन और मजबूत होगा। उन्होंने दमन हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल का उद्घाटन भी किया और नमो अस्पताल को देश को समर्पित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सूरत में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत के कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। उन्होंने कहा कि हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने हमेशा अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृहमंत्री ने कल त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ से अधिक हो जाएगा।

0: इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिवसीय भारत दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुगियोनो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। हिमाचल प्रदेश में कल देर शाम रिक्टर स्केल पर 5.0 तीव्रता का भूकंप आया। यह भूकंप लगभग 10:04 पर आया। भूकंप का केंद्र जमीन से 5 किलोमीटर की गहराई में था। आसपास के क्षेत्रों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। अभी तक किसी के हताहत होने या संपत्ति के नुकसान की कोई खबर नहीं है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंकों की जांच और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि छात्र अब रविवार आधी रात तक अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। भारत एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से पराजित हो गई थी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi has emphasized self-reliance in the energy sector, stating that the world is moving towards a green future and India is actively leading the way by balancing economic growth with ecological preservation. Addressing a large gathering after launching various infrastructure projects worth over 18,000 crore rupees in Surat yesterday, the Prime Minister pointed out that out of India's total renewable energy capacity of 250 gigawatts, Gujarat alone contributes 50 gigawatts, accounting for a crucial 1/5 of the nation's green energy share. Speaking on the transformation of Surat, the Prime Minister praised the city's spirit and its transition into a green city.
2: Surat sirf swachhta aur circular economy tak hi simit nahi hai, balki green growth ke dusre madhyamon ka bhi abhutpurva gati se vistar ho raha hai. Surat aisi vyavastha banane mein juta hai jahan sadkon par chalne wali sari basein electric hongi. Saath hi yahan Surat metro ka bhi vistar ho raha hai. ये सारे कदम हरित शहर के रूप में सूरत की पहचान को और सशक्त करेंगे।
1: After reaching Surat, the Prime Minister first visited Hazira and reviewed the ongoing industrial and infrastructure operations. Prime Minister Narendra Modi has asserted that the foundation of the Indian economy remains exceptionally strong, with the nation recording a 7.7% growth in the fiscal year 2025-26 despite a global economic crisis. Addressing a large gathering after launching a series of developmental projects worth over 2,970 crore rupees in Daman, the Prime Minister noted that India continues to be among the fastest growing economies in the world. He assured the citizens that the country will forge ahead with its reform express while prioritizing massive infrastructure development and welfare schemes for the poor. Prime Minister Narendra Singh has Modi has congratulated people of Uttar Pradesh for planting over 5 crore saplings on World Environment Day. Sharing a social media post of Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath on Mr. Modi said, "This amazing success associated with the Ek Ped Maa Ke Naam campaign shows that today people are completely committed to environmental protection." He expressed confidence that such initiatives will be very helpful in realizing the green future of Uttar Pradesh as well as the entire country. He added that it will inspire every countryman. Sharing a social media post of Assam Chief Minister Hemanta Biswa Sarma, who informed that people of Assam planted over 1.02 crore plants on Environment Day, the Prime Minister congratulated to the people of Assam, especially the Nari Shakti of the state, for taking the lead in this effort aimed at building a sustainable planet. He said it's a commendable feat. India's economy has maintained a strong momentum in 2025-26, with real gross domestic product GDP estimated to grow by 7.7% in comparison.

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और समय हो गया है प्रोग्राम हमराही का। मैं हूं आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती और आप सबका स्वागत करती हूं और एक प्यार भरा नमस्कार आप सबको। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम के इस प्यारे से गीत के साथ।

सच्चे प्यार की दुआएं अक्सर रात की तन्हाइयों में निकलती हैं और शायद ऊपर वाला भी उन्हें मुस्कुराकर सुनता है।

जब कोई दिल में उतर जाए, जब कोई दिल में उतर जाए तो फिर हर धड़कन उसी का नाम लेने लगती है, और कब वो दिल में बस जाते हैं पता ही नहीं चलता।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

कभी कभी प्यार शब्दों से नहीं, बस एक पुकार से महसूस होता है, जब दिल किसी अपने की आवाज सुन के बेचैन हो जाए, तब हर खामोशी भी मोहब्बत का पैगाम बन जाती है।

मोहब्बत, मोहब्बत जब सच्ची हो तो हर सपना हकीकत जैसा लगने लगता है। दिल यही दुआ करता है कि हर प्रेम कहानी को उसका खूबसूरत मुकाम मिले और हर इंतजार खुशियों में बदल जाए।

जब दिल किसी की चाहत में खो जाए, जब दिल किसी की चाहत में खो जाए तो हर रास्ता उसी की ओर जाता है। मोहब्बत का सबसे खूबसूरत एहसास वही है जब किसी की मुस्कान में अपनी सारी खुशियाँ नजर आने लगे।

आज की सुहानी रात में प्यार की उन मधुर भावनाओं को महसूस कीजिए, जहाँ एक दिल पुकारता है और दूसरा दिल उसकी धड़कनों में जवाब देता है।

और इन्हीं प्यार भरी लाइनों के साथ मैं आपसे लेती हूँ विदा। जल्द हाजिर होंगी यानी 4:10 पर फिर से हाजिर होंगी लेकर कार्यक्रम अरुणिमा। तब तक के लिए आपसे मैं ले रही हूँ अनुमति, छोड़े जा रही हूँ एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। गीत के बाद आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, तो जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर दर्ज की है। दमन में 2,970 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि देश बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास और गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए सुधारों की अपनी गति को बनाए रखेगा। श्री मोदी ने कहा कि नई परियोजनाएं युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश के लिए शुरू की गई विभिन्न समुद्री परियोजनाओं से एक मजबूत ब्लू इकोनॉमी के लिए भारत का विजन और मजबूत होगा। उन्होंने दमन हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल का उद्घाटन भी किया और नमो अस्पताल को देश को समर्पित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सूरत में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। उन्होंने कहा कि हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने हमेशा अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृहमंत्री ने कल त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिवसीय भारत दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुगियोनो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। मिजोरम में सत्ताधारी जोरम पीपुल्स मूवमेंट के उम्मीदवार के लाल तलुवांग कीमा ने इस महीने की 18 तारीख को होने वाले राज्य सभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। सूत्रों ने बताया कि मिजोरम में मुख्य विपक्षी पार्टी MNF सोमवार को अपने उम्मीदवार की घोषणा करेगी। कांग्रेस और भाजपा राज्य में अपने उम्मीदवार नहीं उतार रही हैं क्योंकि उनके पास चुनाव लड़ने के लिए जरूरी 4

एक बार फिर से हाजिर हो लेकर कार्यक्रम अरुणिमा। आप सब सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और शुरुआत करते हैं प्रोग्राम अरुणिमा की। इस प्यारे से गीत के साथ, गीत है फिल्म रानी रूपमती से लता मंगेशकर की आवाज में, गीतकार भरत व्यास, संगीतकार एस एन त्रिपाठी।

आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत। फिल्म बेटा से अनुराधा पोटवाल की आवाज में गीतकार समीर, संगीतकार दिलीप सेन, समीर सेन।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, प्रोग्राम है अरुणिमा। अगला गीत सुनते हैं फिल्म सती सावित्री से लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज में, गीतकार भरत व्यास, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

अभी आपने गीत सुना फिल्म दीवाना से, अलका याग्निक, कुमार शानू और उनके साथियों की आवाज़ में, गीतकार समीर, संगीतकार नदीम श्रवण।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म जमीन के तारे से आशा भोसले और सुधा मल्होत्रा की आवाज में।

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म खामोशी से कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में, संगीतकार जतिन ललित।

और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत स्वदेश फिल्म से, उदित नारायण हरिहरन कैलाश खेर की आवाज में। गीतकार जावेद अख्तर, संगीतकार ए आर रहमान।

और समय कह रहा है कि अब आपसे अनुमति ले लीजिए। जाने से पहले बस यही कहूंगी कि 5:10 पर फिर से हाजिर होंगी लेकर प्रोग्राम भोर भोर सुहानी। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर दर्ज की है। दमन में 2,970 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद कल प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि देश बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास और गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए सुधारों की अपनी गति को बनाए रखेगा। श्री मोदी ने कहा कि नई परियोजनाएं युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश के लिए शुरू की गई विभिन्न समुद्री परियोजनाओं से मजबूत ब्लू इकोनॉमी के लिए भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। उन्होंने दमन हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल का उद्घाटन किया और नमो अस्पताल को देश को समर्पित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने बताया कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। उन्होंने ये भी बताया कि भारत और सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने हमेशा अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृहमंत्री ने कल त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामुरा सीमा चौकी क्षेत्र में आयोजित किए गए प्रहरी सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर और सुगियोनो कल नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि जून 2026 तक देश भर में 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित खाद के इस्तेमाल का यह अभियान एक देशव्यापी जन आंदोलन बन गया है। इस अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। मिजोरम में सत्ताधारी जोरम पीपल्स मूवमेंट के उम्मीदवार के लाल तलु आंग कीमा ने इस महीने की 18 तारीख को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। सूत्रों ने बताया कि मिजोरम में मुख्य विपक्षी पार्टी MNF सोमवार को अपने उम्मीदवार की घोषणा करेगी। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी राज्य में अपने उम्मीदवार नहीं उतार रही है। मिजोरम के साथ साथ आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और राजस्थान इस महीने की 18 तारीख को अपने राज्यसभा सदस्य चुनेंगे। एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। जापान के काका मेघारा में कल खेले गए सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत की अंडर 18 लड़कियों की टीम को सेमीफाइनल में चीन से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और एक बार फिर से हाजिर हो लेकर प्रोग्राम भोर सुहानी। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त भारती, और आप सबका स्वागत करती हूँ। भोर की पहली किरण जब धरती को सुनहरी चादर ओढ़ती है, तब मन भी नई उम्मीदों की धुन गुनगुनाने लगता है। तो शुरुआत करते हैं प्रोग्राम भोर सुहानी की इस भजन के साथ।

भोर की पहली किरण हमें ये सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति हमारे मन और विचारों में होती है। जब मन दृढ़ हो, वाणी मधुर हो और लक्ष्य स्पष्ट हो, तब हर कठिन राह भी आसान लगती है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रोग्राम चल रहा है भोर सुहानी। कोयल की मधुर कूक प्रकृति का संदेश है कि अपने जीवन में प्रेम, सौहार्द और सकारात्मकता के स्वर खोलिए। मीठे बोल केवल दूसरों का ही नहीं, अपना जीवन भी सुंदर बना देते हैं।